0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: तेरे नैना हंस दिए बस गए।
2: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत जरूरी यात्रा पर निकले हैं और आपको सूरज ढलने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना है। रास्ता लंबा है, उबड़ खाबड़ है और आपके पास सवारी के रूप में एक तेज घोड़ा है। एक समझदार मुसाफिर ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वह बिना एक पल गवाएं फुर्ती से घोड़े पर जीन कसेगा, लगाम हाथ में लेगा और पूरी गति से आगे बढ़ेगा। वह रास्ते के ढाबों पर रुककर आराम करने में, व्यर्थ गप्पे लड़ाने में अपना समय नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर एक बार सूरज डूब गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया तो वह रास्ता भटक जाएगा और जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगा। हमारी यह जो जिंदगी है ना, यह भी ठीक वैसे ही एक सीमित यात्रा है। विधाता ने हमें सांसों की एक तय पूंजी देकर इस संसार के रास्ते पर भेजा है, लेकिन अफसोस कि हम इस यात्रा की गंभीरता को भूलकर आलस और कल पर टालने की बीमारी में जी रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी गहरी नींद से जगाने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह चेतावनी रूपी सूत्र। कबीर तुली पलानिया चाबक लिया हाथी, कबीर तुली पलानिया चाबक लिया हाथी, दिवस थका साई मिलो पीछे पड़ी है राती।

0: आतिं। श्रोताओं, कबीर साहब एक कुशल घुड़सवार की तरह साधक के भीतर का साहस जगाते हुए कहते हैं, कबीर तुली पलानिया, हे साधक, अब देर मत कर, तुरंत उठ और अपनी इस काया रूपी घोड़े पर तुली पलानिया यानी सजगता की जीन कस लें, अपनी साधना को तैयार कर लें। चाबक लिया हाथी और अपनी हाथी यानी हाथ में विवेक और होश का चाबक यानी चाबुक थाम लें, ताकि जब भी यह मन रूपी घोड़ा आलस करे या भटके तो तू इसे ज्ञान की चोट से सही रास्ते पर ला सके। कबीर इस तत्परता के पीछे का सबसे बड़ा कारण अगली पंक्ति में बताते हैं, दिवस थका साईं मिलो। दिवस थका का अर्थ है दिन रहते यानी जब तक तुम्हारी आंखों में रोशनी है तब तक शरीर में सांसें चल रही हैं और यह जीवन रूपी दिन बचा हुआ है। इसी समय में अपने पुरुषार्थ से वह साईं यानी निराकार परमात्मा से मिलो यानी एकाकार हो जाओ। पीछे पड़ी है राती, क्योंकि यदि तुमने आलस किया तो बहुत जल्द बुढ़ापे और मृत्यु की भयानक राती यानी रात पड़ जाएगी और उस अंधकार में तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यह दोहा क्षणभंगुरता और तीव्र संवेग का महासूत्र है। बौद्ध दर्शन ने जिसे अनित्य भाव कहा और वेदांत में जिसे काल की गति माना गया है, कबीर उसे यहाँ समझा रहे हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। वह सोचता है कि भजन, ध्यान और ईश्वर की बातें बुढ़ापे में करेंगे। कबीर इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, यह जीवन रूपी दिन बहुत छोटा है। जो साधक अपने हाथ में होश का चाबुक लेकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही इस जीवन का पूरा लाभ उठा सकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी उम्र और अपनी सांसों का हिसाब लगाइए। हम रोज अपनी जिंदगी का एक और कीमती दिन व्यर्थ की चिंताओं, गप्पों, सोशल मीडिया और कल कर लेंगे के झूठे बहाने में गंवा देते हैं। हमें लगता है कि रात अभी बहुत दूर है, पर समय का पहिया बहुत तेज घूम रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने हाथों में उस चाबक यानी होश को थामने की, अपने आलस को झटका दीजिए। जब तक शरीर स्वस्थ हैं, बुद्धि जागृत हैं, इस दिवस में उस राम नाम के सुमिरन को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। अपने मन को उस परमात्मा के प्रेम में लगाइए, ताकि जब मृत्यु की रात आए तो आप अंधेरे से डरने के बजाय परम आनंद के प्रकाश में लीन हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बा तथागता, तू म्हणालास वास्तवातील मानवी जीवन हे सत्य आहे, जन्म होणे हे सत्य आहे, दुःख हे सत्य आहे, तसेच मृत्यू होणे हे देखील सत्य आहे। तू अविवेकी प्रश्न बाद केलीस, अविवेकी प्रश्नांच्या उत्तराने कोणतेही फलित नाही, लाभ नाही, तेव्हा मानवी मेंदू भ्रमिष्ट करणाऱ्या आणि हजारो वर्ष काल्पनिकतेत भोवंडणाऱ्या अविवेकी प्रश्नांना तू बाद केलीस, माणसाचे लक्ष विवेकी बनविलीस, शील संवर्धनातून नीतिमान बनणाऱ्या प्रवासात प्रज्ञाशीलतेने परोपकाराने मानव समूहासाठी कसे जगावे हे तू शिकवले. दुःखाला भिडणं आणि दुःखाशी लढणं हे तू शिकवलेस. तू म्हणालास दुःख हे सत्य आहे आणि प्रत्येक सजीवाच्या आयुष्यात ते येणार आहे. त्यामुळे दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध मार्ग सत्य, त्याचा मार्ग तूच दाखविलास. दुःख म्हणजे फक्त नकारात्मकता, बुद्ध फक्त दुःखावरच बोलतात अशीही टीका झाली तुझ्यावर. परंतु हे तथागता, तू फक्त दुःखच उगाळीत बसला नाहीस तर त्यावरील प्रभावी मार्गही तू कथन केलास. विश्व बनले अणू आणि रेणूंनी, परमाणूंनी, हा विज्ञानाचा अगदी अलीकडचा शोध, हिग्स बोसान कणांचा तू 2500 वर्षांपूर्वी मांडलास आणि विश्वाची संरचना सिद्ध करताना आपल्या तपसामर्थ्यानं भांडलास आणि भिडलास निसर्गाला. तसं तू शोधून काढलं देह कष्टावणाऱ्या साधनेतील भोंगळपण. ज्ञान साधनेसाठी जेव्हा कष्टावला तुझा देह, तेव्हा 5 श्रवण पंचवर्गीय भिक्कू सेवेसाठी होते तुझ्या तत्पर. पण तू जाणलेस शरीरात अन्न नाही म्हणून ऊर्जा नाही, ऊर्जा नाही म्हणून साधनेची प्रबळता नाही, एकाग्रता नाही. देह कष्टावल्यामुळे तुला नदीचे पाणी प्राशन करताना किती कठीण यातना झाल्या. धुळीने माखलेल्या देहाला सरपटत न्यावे लागले नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत. ऊर्जेशिवाय तू एवढा गलित गात्र की तुला वाटले चेतनाच निघून जाईल या क्षणी शरीरातून. धुळीनं माखलेला देह घेऊन थकलेला झाडाच्या बुंद्याशी टेकून बसलास तू आणि सुजाता आली खीर घेऊन वनदेवतेला द्यायला. तिला वाटले तू वनदेवताच, तिने दान केली तुला खीर श्रद्धापूर्वक. खीरीच्या प्राशनाने तुला वाटला उत्साह आणि तू मध्यम मार्गाचा उद्घोष केलास. रिकामे खीरीचे पात्र तू भिरकावलेस नदी पात्रात उलट दिशेने आणि संकल्प केलास मला ज्ञान प्राप्ती होणार असेल तर हे पात्र प्रवाहासोबत वाहून येणार नाही. पात्र दिसेना असे झाले तसा तू मात्र ठामपणाने माघारी फिरलास ज्ञान प्राप्तीच्या संकल्प आणि जिज्ञासेने. बोधिवृक्षाच्या झाडाखाली तू पालथी मारलीस. पद्मासनातील ध्यानमुद्रेने अर्धोन्मिलित नेत्रांनी संकल्प केलास ज्ञान प्राप्तीचा, बुद्धत्व प्राप्तीचा. आता हो काहीही घडू दे, काहीही उलथा पालथ होऊ दे, कितीही येऊ देत संकटे, कितीही तरी बुद्धत्व प्राप्तीशिवाय उठायचेच नाही असा संकल्प तुझा, तुझे अधिष्ठान, तुझी ध्यान साधना टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणारी, एकातून दुसऱ्यात प्रवेशणारी ज्ञान बिंदूकडे.
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोती आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टच.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है, मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग, और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगती है शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, ये बिलीफ सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया I am a happy being. This itself is a big shift in the way I'm going to think. और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी happiness dependent नहीं है, मेरी happiness बाहर से नहीं आनी है, तो I stop looking for it outside. You know, अभी तक I'm always looking for it. And मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी. अब मुझे ये decide करना है, मुझे खुश रह कर
0: चीजें
1: करना है. यू नो द फोकस शिफ्ट्स, एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रहकर फिर ये करना है. इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट. जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए. एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट. अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क. तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी. पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा वाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर. लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, वाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस. नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क. किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहां से लाना है, वहां से लाना है और उससे खुशी आएगी. अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है. एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी to have an exchange of this energy. I am not going to go to work ताकि मुझे ये मिले, लेकिन I am going to go to work ताकि I get the opportunity to share these. पूरा purpose shift हो जाता है. And एक first thought जो morning की है ये create करना बहुत important है. और अगर हम अपनी vocabulary को check करें तो ये have to word इसको निकालना
0: हो. इसको delete ही कर देना चाहिए. And somewhere amazing, oh my god, I can't believe it कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी. कैन वी डू दैट, या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला
1: है. देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी. अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट. मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है. लेकिन इफ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूं मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा. वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी. तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क. और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग. सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो. रात को प्रिपेयर योर सेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. कुछ भी अपने आप नहीं होगा. हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप नहीं,
0: यू हैव टू डू दिस.
1: अपने आप नहीं होगा. एक बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, चेंज इट. एंड चेंजिंग इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इट विद समथिंग एल्स. हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जेनरेट करती है. ठीक है, थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है. फीलिंग पर पता चलेगा, वाई नॉट चेंज द थॉट. जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं आई हैव टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है. अभी अभी करो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी. इट इज इमीडिएटली हैपनिंग इनसाइड. लेट्स ट्राई टुमारो मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा, आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं. सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूं, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूं
0: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा.
1: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And agar wo automatically apne aap sirf nahi create ho rahi, baith kar usko karna hai. Baithna hai, apne aap se 2 minute baat karni hai, pehli good morning apne saath honi chahiye. It is very important. And prepare, I want to go to work. I'm very happy. Not, I have to go to work to earn this, to get happiness. Nahi, equation change hai. I am a happy being. और वो जो 2 मिनट हम reflection रोज करते हैं उसको सुबह में करके शुरू करना है. अब आप निकले मॉर्निंग
0: तो अपने साथ जो हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, this conversation actually can go on.
1: आप वैसे भी सारे काम करते हुए conversation अंदर
0: चलती रहती है, you know, so why don't we consciously create this conversation?
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि meditation कोई 2 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे की चीज नहीं है. मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है. क्योंकि मेडिटेशन मींस क्या, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन. मेडिटेशन मींस थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मींस अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स. तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा, हम सारा दिन कर सकते हैं. लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं, क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितनी. तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठ कर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत ईजी है. अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट. राइट थॉट से उठे, प्रॉमिस योर सेल्फ इमिडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका. क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है. कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल. करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है. अब उसी को या तो ऐसे करके करो या
0: बच्चे
1: फिर
0: सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार नहीं
1: से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे. अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज. हाँ ये है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. नाउ वंस आई स्टार्ट माई डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल. ये तो फंडामेंटल है. आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें, कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है.
0: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो,
1: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन. सी अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे. रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता, तो व्हाट इज द पॉइंट अननेसेसरली वी आर क्रिएटिंग. सी लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना चीखना गुस्सा करना, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी. तो खुशी है, अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अब जजमेंटल क्रिटिकल क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल में
0: मतलब दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं, मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
1: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूं, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माय वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, duniya mein kya ho raha hai, uske wastage of energy. ab jaise hi hum judgmental hone lagte hain lekin log to hamare anusar nahi chalte to frustration create hota hai. suppose senior hai junior ko bol rahe hain bar bar lekin wo manta hi nahi, to ab kya hoga, aur frustration aayegi aur gussa aayega, hum out of control chale jate hain. that is why we say anger is like temporary insanity. you go temporary insane. why insane? क्योंकि आप out of control चले गए हैं. पहली चीज तो वो emotion ने आपको overpower कर लिया है. so you lose your creativity.
0: actually अगर हम देखें सचिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था, हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे. और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
1: बिल्कुल.
0: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा
1: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते. लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी.
0: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
1: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
0: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
1: yes.
0: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी. तो फिर पूरा फोकस yes. आपके ऊपर था.
1: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बना कर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट
0: एवरीवन. यस,
1: एवरीवन.
0: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
1: या, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
0: ओके.
1: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
0: आपके कर्म को ही मैंने,
1: कर्म या बोल व्यवहार जो भी, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस. मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
0: तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे.
1: एग्जैक्टली. That's the point. तो आपको खुद को भी नहीं पता कि आप
0: तो हाँ, I know. जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
1: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
0: हुए माई
1: तो फिर भी ठीक है, हुए माई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन. लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूँ. एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी, ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट.
0: एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
1: यस, लेकिन आप सारा दिन में देखना ना, सपोज मैं आप एन एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे. लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, I say, I did not expect this from you. So expectation मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने different तरह से कैसे कर लिया. So I did not expect this from you. तो किसी के past के साथ उसको compare करना कि ये जैसे करते आए हैं जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके belief systems पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ. और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी लेट डाउन, वेरी लेट डाउन. एंड वो हर्ट, फिर सैडनेस एंड फिर एंगर. एंगर भी निकलता, आउटबर्स्ट तो निकलती है. अब बहुत दो बातों में हम फंसते हैं, एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना, उसमें भी बहुत चैलेंजेस, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, वो भी. ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
0: मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, मुझसे क्या चाहिए. बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं.
1: अब दोनों केस में क्या है, इफ यू मीट माई एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे, तो दोनों चीजों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रिडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं है और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. Whose fault is this?
0: उनकी या मेरी? See again, you know, it's now फिर हम बिल्कुल उस deep belief systems पे आ गए हैं जो जिन पर हम वही पूरा मेरा process उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से behave करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो it's actually
1: It's so natural I get hurt.
0: I get hurt, yes.
1: Belief system change करने ना अपने सारे. I didn't hurt you.
0: I think language.
1: I just changed my behavior. ये बहुत critical हो जाता है कि future prediction पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है, वो खुशी कैसे स्टेबल होगी.
0: तो ये इस बिलीफ
1: क्योंकि वो तो एक भविष्य का प्रिडिक्शन है ना. दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी के मैंने भविष्य का आपका प्रिडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया, और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे. एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ, यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की,
0: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है.
1: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
0: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे.
1: नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे. आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे. क्या होगा फर्क.
0: अच्छा, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी. एक्सपेक्टेशन बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच. दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
0: तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी
1: ठीक. लेकिन अगर नहीं किया तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ या ये नहीं कर सकते.
0: आई थिंक सो यस.
1: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे
0: ऐसे होते रहेंगे.
1: अगर हमें अपने जीवन
0: गुड यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस वी कैन डू दैट.
1: ये तो कर सकते हैं.
0: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
1: वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू. सी इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम. और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाले हूँ उसके बाद.
0: नो बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो सपोज मुझे पता है
1: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ.
0: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है. सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा. उसे नहीं पसंद था बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी.
1: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात. दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो. लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया. सी इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ. इट हैज टू बी मी. इफ इट इज नॉट माई डिसीशन आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट. लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा. देखो खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर करम करना.
0: अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही है.
1: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ.
0: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस. फाइन, फिर काफी टाइम बाद मैंने किया तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा अगर मैंने उस अपना बनाया होगा. मैं उसे एक्सेल भी कर जाता हूँ, लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था.
1: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था. देखो उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं.
0: Because it is between you and the work.
1: Yeah, when whatever decision आपने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का है. जब तक आई नो वन ब्रदर जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, द मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द गर्ल. एंड भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया. और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज. लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया. अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया. यू नो एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया,
0: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
1: exactly.
0: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है,
1: स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के
0: आप वही आप
1: में, एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया, दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप. फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहां भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं. तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज मेरी
0: अपनी
1: नहीं हो जाती. आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो दिन, देन इट्स ओनली मी माय डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट. ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा आपके लिए क्या आपके लिए क्या आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने के प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है. तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है. उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
0: तो दैट्स ओके,
1: आप हर्ट नहीं होंगे. सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन. And then it's energy of pain.
0: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने

कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने का बापू ने तय किया। सबसे पहले कौन जाए, ये प्रश्न उठा तो बापू ने पहले सत्याग्रही के तौर पर विनोबा का नाम चुना और दूसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का। बापू ने विनोबा को सेवाग्राम आश्रम में बुलाया और पूछा,
1: तैयार होने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा? तुम्हारे सिर पर तो बहुत बोझ है।
2: तब मैंने कहा, काम तो बहुत से हैं, परंतु वे सब मेरे हाथ में हैं। मेरे सिर पर उनका कोई बोझ नहीं। मैं तो इसी क्षण तैयार हूं। पवनार जाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी आज्ञा मेरे लिए यमराज की आज्ञा के बराबर है। उससे इनकार करने का सवाल ही नहीं।
0: बापू के पास उन्हें 24 साल हो गए थे। एकाग्रता पूर्वक बापू के कार्यक्रमों में डूबे हुए थे, परंतु बापू के आश्रम वासियों को छोड़कर कोई उन्हें जानता नहीं था। जब प्रथम सत्याग्रही के तौर पर उनका नाम आया तो सबके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि ये विनोबा कौन है। तब बापू ने विनोबा के बारे में एक छोटा सा लेख लिखकर जन समाज के सामने उनको ला खड़ा किया। ।1942 के आंदोलन के पहले की बात है। गांधी जी ने जेल प्रवेश के साथ ही उपवास शुरू करने की बात सोची। तब उनके मन में प्रश्न उठा कि प्रेम पूर्वक सामूहिक उपवास करके मृत्यु का आलिंगन करने का आंदोलन हो सकता है या नहीं। जब सेना में लाखों लोगों की भर्ती हो सकती है तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उपवास का श्री गणेश अपने आप से करने का बापू का विचार था, पर उपवास की श्रृंखला कैसे चलाई जाए, आदेश से उपवास हो सकते हैं क्या, इत्यादि सब प्रश्न सबको परेशान कर रहे थे। बापू ने विनोबा को बुलाया और अपने मन की सारी कल्पना विनोबा के आगे रखते हुए पूछा,
1: जो काम ज्ञानी ज्ञानपूर्वक कर सकता है वही काम अनुयायी श्रद्धा पूर्वक कर सकता है या नहीं?
2: जी हाँ, कर सकता है। जो काम राम जी ज्ञानपूर्वक कर सकते हैं वही काम हनुमान जी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं।
0: बात पूरी हो गई। विनोबा उठकर चले गए। यदि बापू उपवास शुरू करे तो दूसरे लोगों को भी उपवास शुरू कर देने चाहिए, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। 9 अगस्त का दिन आया, बापू गिरफ्तार हो गए। उसी दिन विनोबा भी जेल चले गए। जेल में दाखिल होते ही विनोबा ने जेलर से कहा,
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, जेल में सभी नियमों का मैं सूक्ष्मता से पालन करने वाला और दूसरों से पालन कराने वाला हूं। आपको यह भी मालूम है कि मैं जेल में आता हूं तब से आपका काम कम हो जाता है। आपका सभी काम मैं उठा लेता हूं, परंतु इस वक्त ऐसा होने वाला नहीं है। सुबह मैं खाकर आया हूं इसलिए दोपहर के भोजन का सवाल नहीं है, परंतु शाम से मैं खाने वाला नहीं हूं। कब तक भोजन नहीं लूंगा मैं खुद नहीं जानता हूं। आपका कोई अनुशासन तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी एक शिस्त है उसके पालन के लिए यह कर रहा हूं।
0: बापू गिरफ्तार हुए तब प्यारेलाल जी बाहर थे। बापू ने उनसे कहा था कि विनोबा को खबर पहुंचाओ कि जेल में दाखिल होते ही उपवास शुरू नहीं करने हैं। प्यारेलाल जी ने वो संदेश किशोरलाल भाई को भेजा। किशोरलाल भाई ने कलेक्टर से कहा। कलेक्टर ने गवर्नर से पूछा कि ऐसा संदेश भेज सकते हैं क्या। गवर्नर ने कहा, हाँ भेज सकते हैं, शर्त इतनी ही है कि एक भी शब्द अधिक न कहा जाए, कोई मुलाकात भी नहीं, सिर्फ कह देना कि उपवास न करने का बापू का आदेश है। परंतु किशोरीलाल जानते थे कि विनोबा किसी के कहने से मानने वाले नहीं। उन्होंने आखिर वालुंस्कर को भेजकर बापू का आदेश विनोबा को कह सुनाया। ऐसे है 20वीं सदी के ये हनुमान जी।

0: ग्रामोद्योग संघ बनाना चाहते थे। ग्रामोद्योग संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए इस बारे में चर्चा चली तो बापू के मन में मेरा नाम आया, परंतु मुझको किसी पद पर बिठाना आसान नहीं था। बापू ने पहले तो उस काम के गुणगान शुरू किए, फिर मुझसे बोले,
1: ग्रामोद्योग कितने महत्व का और अच्छा कार्य है, यदि तुम ऐसे महत्व के कार्यों को उठा लेते हो तो मेरे सिर पर उसकी कतई चिंता नहीं होगी, परंतु हाँ, मेरे दबाव के कारण यह काम करना है ऐसा नहीं है। तुम खुद इस पर सोचो और फिर जो चाहे वो निर्णय करो।
0: मैं तो थोड़ा टफ था, परंतु जो लोग बापू वाक्यम प्रमाणम वाले थे उनसे भी बापू आखिर का वाक्य यही कहते कि तुम लोग इस पर सोचो। यह उनकी मर्यादा थी, वे कर्म प्रधान थे, काम होना चाहिए यह देखते थे, परंतु मनुष्य की ओर भी देखते थे। बापू ने मुझे आखिर का मंत्र सुना दिया, मैंने भी पिताजी का रंग का प्रयोग वाला किस्सा सुनाकर कहा, खादी का प्रचार तो पूरा होता नहीं है, ग्रामोद्योग को न्याय कैसे दे पाऊंगा।
2: विनोबा ने खादी का काम हाथ में लिया था, इसलिए बापू को स्वीकार करना पड़ा कि नए काम के लिए नए मनुष्य को ढूंढना होगा। एक मनुष्य दो कामों को न्याय नहीं दे सकता। बापू मान गए।

0: बार बापू ने बहुत महीन कातना शुरू किया था और मेरा उस वक्त मोटा कातने का प्रयोग चल रहा था। उसका जिक्र करते हुए मैंने बापू को लिखा कि आपकी तो बाणभट्ट की कादंबरी चल रही है और मेरी तो रामायण ही चलती है।
1: मैंने पत्र द्वारा जवाब दिया, मेरी बाणभट्ट की कादंबरी नहीं है, मेरी भी तुम्हारी जैसी रामायण ही है। फर्क मात्र इतना ही है कि तुम्हारा अभी बालकांड चल रहा है और मेरा उत्तरकांड चल रहा है।

0: विनोबा जी मानते हैं कि किसी के हृदय में यदि प्रवेश पाना हो तो उसके गुण देखने से ही वो प्रवेश मिल सकेगा, दोष देखने से नहीं। हृदय शुद्धि और शब्द शक्ति का काम तभी बनेगा जब गुण ग्रहण होगा। दूसरों का दोष देखना नीचे की भूमिका है। समाज शास्त्रज्ञों की ऐसी भूमिका है कि किसी के दोष भी नहीं देखने चाहिए और किसी के गुण भी नहीं देखने चाहिए, तभी सम्यक दर्शन हो सकेगा। उसके भी आगे की भूमिका नैतिक भूमिका है, जिसमें दूसरों के दोष कम करके देखना और गुणों को बढ़ाकर देखना होता है। गांधी जी की यही भूमिका थी।
1: गांधी जी के पास जाने के पहले मेरी भूमिका अलग थी। प्रत्येक की परीक्षा करता था और यह पोल है ऐसा तय करता जाता था, परंतु बापू अपनी नैतिक भूमिका पर खूब जोर देते थे। इसलिए एक बार मैंने बापू से पूछा, दूसरों के दोषों को कम करके देखने में और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखने में सत्य की हानि नहीं होती क्या? इस भूमिका का सत्य निष्ठा के साथ कितना मेल बैठता है?
2: यह तो स्केल है। जैसे नक्शे में एक इंच लिखा हो तो उसे 4 मील मानते हैं, वैसे ही हमारी आँख ऐसी विचित्र है कि दूसरे का दोष थोड़ा भी हो तो उसे बढ़ाकर देखती है और अपना गुण छोटा हो तो भी उसे बढ़ाकर देखती है। इसलिए स्केल के मुताबिक दूसरों का दोष कम करते जाने से और अपने गुण कम करते जाने से सही नाप निकल कर आएगा।
0: बापू के इस जवाब से विनोबा को मार्गदर्शन मिला, परंतु उसके बाद भूदान यात्रा के सिलसिले में उन्हें नया सत्य प्राप्त हुआ कि दूसरों के दोषों की तरह अपने भी दोषों को कम करके देखना चाहिए और दूसरों के गुणों की तरह अपने गुणों को बढ़ाकर देखना चाहिए। किसी का भी दोष दर्शन नहीं, सबका गुणगान। मीरा गाती थी ना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, दुनिया में सर्वत्र गोविंद ही भरा है, कौन भला कौन बुरा। असम के महापुरुष श्री शंकर देव ने लिखा है, जो दूसरों के दोष देखता है वो अधम है, जो दूसरों के गुण और दोष दोनों देखता है वो मध्यम है, जो केवल दूसरों के गुण ही देखता है वो उत्तम है, जो दूसरों के छोटे से गुण का विस्तार करता है वो उत्तमोत्तम है। बापू विनोबा का संबंध अनोखा था, एक तरफ अत्यंत निकट का था, दूसरी तरफ विनोबा कहते हैं कि
1: वैसे मैं 32 साल बापू के पास रहा, परंतु निकट जनों में बापू का कम से कम समय लेने वाले लोगों में मेरी गिनती होगी, बिना किसी विशेष काम के या खुद बापू के बुलाने को छोड़कर। मैं कभी बापू के पास गया नहीं, पत्र भी बहुत कम लिखता था, साल भर में 2-3 बस।

0: विनोबा की बापू भक्ति भरत भक्ति थी। बापू के साथ विनोबा का पत्र व्यवहार भी बहुत कम होता था। कभी कुछ विशेष चर्चा करनी होती तो वे खुद ही लिखते थे। एक बार विनोबा जी को बापू का पत्र मिला। उस वक्त श्री कमल नयन बजाज वहां हाजिर थे। उन्होंने देखा कि बाबा ने बापू का पत्र पढ़कर फाड़ डाला और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाबा की रजामंदी से उन्होंने वह पत्र देखना चाहा। बाबा ने हां कहा तो टोकरी में से सब टुकड़े उठाए और जोड़कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुमसे बढ़कर उच्च आत्मा मेरी जानकारी में नहीं है। उनसे पूछा गया कि आपने ये पत्र क्यों फाड़ डाला तो उन्होंने जवाब दिया,
1: उसको मैं फाड़ता नहीं तो क्या करता, वह पत्र मेरे किस काम का था, निकम्मी चीजें इकट्ठी करने से क्या लाभ। बापू की महानता थी कि उन्होंने पत्र में ऐसा लिख दिया, परंतु मेरी कमी और कमजोरी वे क्या जाने।
0: आज बापू का नाम लेते ही विनोबा की आंखों से आंसू झर पड़ते हैं। तब आश्चर्य होता है कि क्या ये वही विनोबा है जिनके बारे में ये सारा सुनते हैं। माँ और बापू के लिए बाबा का जो उत्कट प्रेम है उसे देखकर यही लगता है कि ये कोई अनोखा प्रेमी है। दुनिया उसको निर्मोही, निस्संग, अनासक्त, वैराग्य संपन्न सन्यासी के नाते पहचानती है, परंतु उस अनासक्ति के बाहरी कवच के अंदर छिपा हुआ जो कुसुमवत कोमल हृदय है उसकी शाह पाना मुश्किल है। कई बार वे कहते हैं,
1: मारण में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होई। जीवन पंथ में संत और प्रभु दो तारक मिले, एक मेरे हृदय में है और दूसरे का आशीर्वाद सदा मेरे मस्तक पर बरसता रहा है।

0: एक बार साबरमती आश्रम में रामायण के एक श्लोक पर चर्चा चली। वो प्रसंग ऐसा कि रावण जब सीता जी को उठाकर ले गया, तब रामचंद्र जी को रास्ते का पता चले। इस दृष्टि से सीता जी ने अपने गहने नीचे पृथ्वी पर फेंक दिए थे। जब प्रभु के हाथ में वे गहने आए, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को वे गहने दिखाए और पूछने लगे कि क्या तुम इन गहनों को पहचानते हो। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, केवरे और कुंडल जो कि ऊपर के भाग के अलंकार है, उन्हें मैं नहीं जानता। मैं उनके नुपुरों को जानता हूं, क्योंकि रोज उनके चरणों की वंदना करते समय मैं उन्हें देखता था। बापू तो क्रांतिकारी थे ही, वे भी चर्चा में भाग लेते हुए बोल उठे,
1: लक्ष्मण का यह कथन सही नहीं लगता। माता जैसी भाभी का मुख नहीं देखेगा, यह कैसा ब्रह्मचर्य। अच्छा बताओ विनोबा, इस पर तुम्हारा क्या अभिप्राय है?
2: मैंने जवाब दिया, लक्ष्मण ब्रह्मचारी थे, इसलिए सीता का मुख उन्होंने देखा नहीं था। यह दृष्टि आपको नापसंद है, इसलिए आप उस वाक्य को नापसंद करते हैं। उस दृष्टि से वह नापसंद करने योग्य ही है। स्त्री का मुख नहीं देखने का नियम ब्रह्मचारी को लेना, इसमें गलती है। परंतु मैं इस वाक्य का दूसरा अर्थ लेता हूं। इसमें लक्ष्मण ने सीता का मुंह देखा नहीं, इतना ही नहीं, इसमें तो यह भी है कि राम सीता के पति लक्ष्मण से पूछते हैं। इसका अर्थ है कि राम भी अपनी पत्नी के गहने पहचानते नहीं, मतलब पति ही पत्नी के गहने नहीं पहचानता है। इसका अर्थ यह निकला कि सीता भी और राम भी दोनों ही अनासक्त थे, दोनों एक दूसरे की आकृति की ओर नहीं देखते थे, एक दूसरे को ब्रह्म रूप देखते थे। परंतु लक्ष्मण सीता के चरणों की पूजा करता था, पादाभिवंदन करता था, यानी उपासना के तौर पर चरणाकृति को मूर्ति समझकर उपासना करता था।
1: तुम तो शास्त्र वचनों का खूब सुंदर बचाव करना जानते हो, यह ठीक भी तो है। जहाँ तक संभव हो शास्त्र वचनों का अच्छा अर्थ करना और होना भी सही चाहिए कि शास्त्र वचनों का अच्छे ही अर्थ हो।
0: एक बार कोई जैन मुनि आश्रम में पधारे थे। आश्रम की प्रवृत्ति देख लेने के बाद विनोबा के पास गए और पूछा, गांधी जी तो महात्मा हैं, आप कौन हैं?
2: मैं आत्मा हूं। बहुत बार मुझे भी महात्मा का पद दिया जाता है, पर मैं तो कहता हूं कि महात्मा नहीं हूं। महात्मा तो बुद्ध, महावीर आदि हो गए। मैं तो विज्ञानात्मा हूं। विज्ञान के जमाने में कम से कम हम वैज्ञानिक मनुष्य तो बने।
0: विनोबा चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आत्मवान बने। वो समझ ले कि वो क्षणभंगुर देह नहीं है, चैतन्य अमर अजरामर आत्मा है। ये प्रतीति हर एक को हो सकती है, हर एक को यह चीज साधनी चाहिए। वे कहते हैं कि
2: प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रपति नहीं हो सकता, परंतु स्थित प्रज्ञ तो हर कोई हो सकता है। स्थित प्रज्ञता विज्ञान युग की अत्यावश्यक मांग है। हर कोई अगर विज्ञानात्मा बने तो कितना दुख, कितनी मनोवेदना जीवन में से अपने आप हट जाएगी और मनुष्य सत्य के ज्वलंत प्रकाश में अपनी प्रगति यात्रा निष्कंटक आगे चला सकेगा। आत्मा कभी महात्मा भी नहीं होता, अल्पात्मा भी नहीं होता, आत्मा आत्मा ही है।
0: एक बार विनोबा ने बापू को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि अभी मेरा कुरान का अभ्यास चल रहा है। बापू ने विनोबा को लिखा कि
1: हम लोग कुरान लिखते हैं और तुम कुरान क्यों लिखते हो?
2: कुरान, यह कुरान का अपना रूप है, जैसे पुराण वैसे कुरान। यह अपना खुद का है, पराया नहीं है। ऐसी उससे आत्मीयता महसूस होती है, अपना रूप दिए बगैर कोई शब्द आत्मसात नहीं होता है।
0: बापू ने विनोबा को कुरान के अभ्यास के जो किताबें चाहिए वे मंगाने के लिए लिखा। पिकथौल, अमर अली मोहम्मद अली, देवबंद शिवली और निजामी के अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी मराठी अनुवाद विनोबा जी देख गए थे, परंतु उनका समाधान नहीं हुआ था, तो आखिर उन्होंने अरबी पढ़ने का निर्णय लिया। विनोबा के जीवन में निरंतर विकासशीलता रही है। जिस क्षण जो चीज बंधनकारी लगती है उसे उसी क्षण फेंक देने में उन्हें दूसरा क्षण नहीं लगता। जैसे सांप अपनी केंचुली को सहजता से छोड़ देता है, वैसे ही वे उस वस्तु को छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग उन्हीं के शब्दों में।
2: 1942 से 1944 तक मैं 3 साल तक जेल में रहा। उस वक्त अनेक लोगों के साथ अति निकट परिचय में आया। जेल में परिचय तो निकट का ही होता है। अनुभव से मैंने देखा कि जेल में अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। कुछ लोगों को अहिंसा पर श्रद्धा थी तो कुछ लोगों को हिंसा पर श्रद्धा थी। मैंने ये भी देखा कि अहिंसा पर श्रद्धा रखने वाले परम दयालु ही हों ऐसा भी नहीं था। मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अहिंसा इस पक्ष में है उस पक्ष में नहीं है, ऐसा भेद करने का कोई खास मतलब नहीं है। बापू ने अहिंसा और सत्य का मंत्रोच्चारण किया। अनुयायियों ने अपनी शक्ति देखकर शांतिमय और वाजिब मार्ग स्वीकार किया। यह भेद समझने जैसा है। काम करने की रीति असत्य होने पर भी, हिंसक होने पर भी पीसफुल शांतिमय हो सकती है। फिर भी इस तरह कहने में उन्होंने जो सत्य निष्ठा दिखाई उससे मुझे खुशी हुई। बापू यह बराबर जानते थे कि अहिंसा के नीचे सबके हस्ताक्षर ले लेने मात्र से काम हो गया, ऐसा मानूंगा तो मूर्ख साबित होऊंगा।

0: स्वराज आंदोलन में अनेक प्रकार के लोग शामिल थे। पूरी हजामत के बिना मुक्ति नहीं मिलती, उसके वास्ते सर्व संकल्प सन्यासी बनना पड़ता है। कल्पना का एक भी बाल बच जाए तो मुंडन अधूरा रहता है। सब उपाधियां मिटाकर चित्त को निरुपाधिक बनाना चाहिए, खास करके इस पक्ष का और उस पक्ष का। इस तरह आत्मा के दो टुकड़े करने वाली कल्पनाओं का बोझ ढोकर हम अहिंसा की शक्ति का उपयोग करें, यह बहुत संभव नहीं है। ऐसा निर्णय लेकर विनोबा जेल के बाहर निकले और बापू से मिले। बापू ने बात ही बात में विनोबा से पूछा,
1: विनोबा, यह आखिरी जेल नहीं है, फिर से भी जेल हो सकती है।
2: मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ।
1: जेल में कुछ नया सोच कर आए हो क्या?
2: जी हाँ, मुझे सब संस्थाओं से मुक्त होना है, उसके बिना अहिंसा में मेरी आगे गति नहीं होगी।
1: बहुत अच्छा कहा, मतलब तुम सेवा सब संस्थाओं की करोगे परंतु अधिकार नहीं लोगे।
2: बापू की सम्मति मिल गई, इसलिए और किसी की कुछ चली नहीं। सभी संस्था वालों को बापू ने मेरे बदले समझा दिया और मुझे मुक्त कर दिया।
0: जीवन की प्रत्येक क्रिया नियमित समय पर हो ऐसा नहीं कर सकती, परंतु जीवन की मुख्य क्रियाएं समय पर हो तो बाकी के कामों में नियमितता यो ही सज जाती है और काम का बोझ नहीं लगता है। ये बताते हुए विनोबा जी बापू का दृष्टांत देते हुए कहते हैं,
2: बापू ने गीता का पदार्थ कोश तैयार किया था, वैसा ही कोश दूसरों ने भी तैयार किया था, परंतु बापू को वह पसंद नहीं था। बापू ने कहा,
1: मैंने उसके पीछे जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई, इससे मुझे लाभ ही हुआ है। कोश के लिए मैं रोज 20 मिनट लेता हूँ, दूसरे सब काम छोड़कर इसी के पीछे लगा होता तो शायद

कोष का काम यांत्रिक था तो वह वैसा हुआ, परंतु गीता के अनुवाद जैसा विचारात्मक काम अमुक समय पर ही हो ऐसा नहीं कह सकते। बापू के लिए वह ठीक है, उनके जीवन में वह सध गया था, अन्यथा प्रतिभा के काम में स्फूर्ति देखकर काम करना होता है, उसमें समय तय नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे विशेष कामों को छोड़कर बाकी के सर्वसाधारण काम आदि नियमितता से करेंगे तो उसमें दिलचस्पी बढ़ेगी, यह अनुभव की बात है।

0: मानव के अंतरंग में छिपी भलाई को विनोबा आर पार देख सकते हैं। इसी से उनके लिए सभी लोग नारायण स्वरूप है। वे कहते हैं कि आज तक मुझे एक भी दुर्जन नहीं मिला। उनकी दृढ़ मान्यता है कि दोष देह के है, गुण आत्मा के है। मानव शरीर मात्र नहीं है, वो तो चैतन्य का आविष्कार है। वो देहधारी है, इसलिए देह के साथ कुछ न कुछ दोष रहेंगे ही, परंतु साथ साथ वो आत्मवान भी है, इसलिए गुणवान भी रहेगा ही। ऐसा अनमोल दृष्टि लाभ उन्हें प्राप्त होने से वे कीचड़ में भी कमल खिला सकते हैं। विनोबा की प्रखर बुद्धिमत्ता और गुण ग्रहणशीलता दिखाने वाला एक प्रसंग उन्हीं के शब्दों में।
1: सन 1916 की बात है। पापू से छुट्टी लेकर मैं एक साल के लिए अध्ययन के वास्ते गया था। यात्रा के दौरान मथुरा भी गया था। उधर अपना काम निपटाकर मैं स्टेशन पर टिकट लेने गया, इतने में गाड़ी छूट गई। मैंने देखा कि एक मिशनरी वहां हिंदू धर्म पर व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान ईसाई धर्म पर था, परंतु हिंदू धर्म की निंदा किए बिना वह व्याख्यान नहीं दे सकता था। वह कह रहा था कृष्ण व्यभिचारी था। अब मथुरा जैसे नगर में कृष्ण को कोई व्यभिचारी कहे तो सामने वाले पक्ष के हाथ में लाठियां तो होंगी ही। इसलिए मैं बिना पूछे उधर पहुंच गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है, बहुत करके यहाँ लाठियां ही चलेंगी। इसलिए बिना किसी के कहे मैंने ही व्याख्यान देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये भाई जो कह रहे हैं वे हिंदू धर्म के विरोध में नहीं कह रहे हैं। हम जिस भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं और जिसकी स्तुति पूजा करते हैं उसकी वे निंदा नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी कल्पना का जो कृष्ण है उसको वे व्यभिचारी मानते हैं और उस कृष्ण की वे निंदा करते हैं। इस तरह से व्यभिचारी मनुष्य की निंदा करने में वे अपने ही पक्ष के हो जाते हैं। इसलिए हमारी मान्यता के विरुद्ध यदि वे व्यभिचारी की स्तुति करें तब उनका और हमारा विरोध हो सकता है। अब कृष्ण कैसे थे उसके बारे में मतभेद है, व्यभिचारी मनुष्य की निंदा हो इस विषय में हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा मैंने जब सबको जचाया तब जाकर वह संकट टला, अन्यथा उस मिशनरी के सिर पर लाठी चलने वाली ही थी। इस प्रसंग पर मेरे हाथ में एक युक्ति आ गई। वह ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था और उसका कृष्ण के साथ कोई द्वेष नहीं था, परंतु उसने कृष्ण को अन्य दृष्टि से देखा था, इसलिए वह उनकी निंदा कर रहा था। परंतु उसकी और हमारी बुद्धि में कोई विरोध नहीं है।

0: के पट्ट शिष्य सेंट पॉल ने एक जगह लिखा है कि अगर एक मनुष्य के पाप से सारा मानव समाज पापी होता है तो एक मनुष्य के पुण्य से पावन भी हो सकता है। बापू भी वैसा ही मानते थे। वे कहते थे कि अगर एक भी सच्चा सत्याग्रही पूर्ण सत्याग्रही हो तो वो सारी दुनिया को बदल सकता है। एक बार बापू से इसी विषय पर विनोबा की चर्चा हुई। विनोबा ने पूछा,
1: तो क्या वह पूर्ण सत्याग्रही कैपिटलिस्ट होगा, सारे पुण्य का संचय अपने पास करेगा?
2: वह उस पुण्य का भी ट्रस्टी होगा, अपने पुण्य संचय का भी बंटवारा करेगा।

0: साबरमती आश्रम के आरंभ के दिन थे। गांधी जी के आकर्षण से अनेक नर रत्न आश्रम में इकट्ठे हुए थे। विनोबा, काका साहब, किशोरलाल भाई तो जाने हुए रत्न थे। एक दफा गर्मी के दिनों में छुट्टियों में उस शाला के शिक्षक और विद्यार्थियों ने पदयात्रा करते हुए आबू जाने का तय किया। पदयात्रा के अनुभवी और प्रेमी दो ही शिक्षक थे। एक थे हिमालय में सैकड़ों मील की यात्रा करने वाले श्री काका साहब और दूसरे थे महाराष्ट्र में पदयात्रा करके घूमने वाले श्री विनोबा। सबने मिलकर इस पदयात्रा का नेतृत्व विनोबा को सौंपा। गांधी जी ने पदयात्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कभी भी निश्चित मील से कम प्रवास नहीं करना। ये आदेश आरंभ में थोड़ा कठिन लगा। साबरमती से पैदल चलकर सब आबू पहुंचे। वहां प्रसिद्ध जैन मंदिर देखकर सब वापस लौटे। उस वक्त पदयात्रियों की छोटी छोटी टोलियां बनी और अंतिम टोली में तीन व्यक्ति रहे, विनोबा जी, श्री काका साहब और विलासपुर के श्री रामानंद जी।
1: हम तीनों पालनपुर दिशा के रास्ते से चल रहे थे। साधारण तौर पर रेल की पटरी के साथ साथ चलने का हमने तय किया था और अब तो अहमदाबाद के नज़दीक पहुंच भी रहे थे। उस रात को साबरमती स्टेशन पर पहुंच जाने की कल्पना थी। संध्या काल को एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से पूछ लिया कि यहां से साबरमती स्टेशन कितना दूर है। उनसे ही मांग कर पानी पी लिया और फिर आगे बढ़े।
2: बहुत दिनों का सहप्रवास था, शाम भी ढल चुकी थी, इसलिए बातचीत बंद हुई और मौन यात्रा चालू हो गई। मैं कुछ आगे चल रहा था। विनोबा और काका साहब बीच बीच में थोड़ा बोल लेते थे और साथ साथ चलते थे। इतने में एक छोटा सा पुल आया। उस पुल पर पथिकों के चलने के लिए बगल से कोई रास्ता नहीं था। दो पाटियों के बीच में मिट्टी भी नहीं थी। एक एक फीट के अंतर पर वे पट्टियाँ थी। एक पटिया से दूसरी पटिया पर ही पाँव रख सकते थे। दोनों पटियों के बीच से नदी का पानी भी दिखता था। पुल पर चढ़ गए। आधी दूर तक पहुंचे होंगे कि पीछे रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक रेलवे इंजन डब्बों के साथ काल पुरुष की तरह बड़ा आ रहा था। मैं सबसे आगे था, फिर काका साहब और आखिर में विनोबा। गाड़ी को देखते ही सब दौड़ने लगे। पुल पर से नीचे कूदना भी संभव नहीं था। बगल में उतर पड़े यह भी संभव नहीं था। उस स्टेशन मास्टर ने बताया भी नहीं कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली है। वह जानता था कि हम लोग रेल के रास्ते से जाने वाले हैं, परंतु ईश्वर को कसौटी करनी थी तो वह भी कहना भूल गया।
3: रामानंद जी तो खूब आगे थे, अतः पुल पार करके नीचे उतर गए। मैं भी तीव्र गति से दौड़ने लगा। पीछे कालदूत ही साक्षात जो आ रहा था। विनोबा भी दौड़ रहे थे, परंतु उनकी आंखें कमजोर थी। चश्मा और चप्पल न पहनने का उनका व्रत था। दौड़ते दौड़ते दोनों पटियों के बीच कहीं पांव फिसल गया तो गाड़ी पीछे अपने क्रूर पंजों में दबाने को आ ही रही थी, परंतु कौन क्या कर सकता था। मैं तो बच गया। आगे पहुंचकर एक तरफ उतर गया और धड़कते हुए दिल से आने वाले उन भयंकर क्षणों का इंतजार करने लगा। मैंने देखा कि विनोबा दौड़ते आ रहे हैं और इंजन उनके नजदीक पहुंच गया है। दोनों मित्रों के हृदय पर सवा सवा मन के बोझिले पत्थर मानो लद गए थे। संध्या का समय, चारों ओर अंधेरा। विनोबा के नजदीक जाकर मैं चिल्ला उठा, विनोबा जंप टू द लेफ्ट, जंप टू द लेफ्ट। अंधेरे में विनोबा दिखते नहीं थे। मेरी आवाज सुनकर विनोबा बाई तरफ कूदे और मैंने उनको अपनी बाहों में थाम लिया। दो चार क्षणों में ही वह कालदूत धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। जिस वक्त विनोबा को मैंने खींचा, उस वक्त मुझे रेलगाड़ी की आवाज के साथ साथ विनोबा के मुख से निकलता हुआ प्रभु नाम भी सुनाई दिया।
1: मुझे पटिया दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु मुझे मालूम था कि ये पटिया समानांतर होती हैं, इसलिए दौड़ने के लिए मैंने एक ताल तय कर लिया। बचपन में मैंने वैसी कोशिश की थी तो भगवान का नाम लेते लेते उसी ताल पर दौड़ने लगा। इंजन एकदम नजदीक आ गया है, ये मैं समझ गया था। काका साहब दिखते नहीं थे, परंतु आवाज सुनकर मैं एकदम बाई ओर कूद पड़ा।
3: मेरी बाहों में विनोबा के आने पर मुझको भी लगा कि परमेश्वर ने ही इनको बचाकर प्रसाद रूप में लौटाया है। उस वक्त तो सबके दिल भी भरे हुए थे, ईश्वर का कैसे उपकार माने, कोई कुछ बोला नहीं। रात को आश्रम पहुंचे और सो गए। दूसरे दिन मैंने बापू को सारी घटना सुनाई और कहा, अब तो विनोबा को चप्पल और चश्मा पहनने की आज्ञा दे ही दीजिए बापू। आज भी जब वो प्रसंग याद आता है, प्राण हाथों में लेकर हमारा दौड़ना, विनोबा को हाथ खींचकर पकड़ना, गाड़ी की धड़धड़ आवाज और उन सब के बीच भी विनोबा के मुंह से राम नाम सुनाई देना, ये सब नजरों के सामने आता है।
0: देह नश्वर है और आत्मा अमर है, ये बातें तो लोग विनोबा के मुंह से बचपन से सुनते आए हैं, परंतु जब साक्षात मृत्यु पीछे से आती हो, तब जीवन और मृत्यु के आलिंगन में से गुजरते समय भी विनोबा के मुंह से सुनाई दिया राम नाम, मानो गीता मूर्तिमंत हो आई हो। ठंडे कलेजे से जीवन की परिपूर्ण सुरक्षा में राम नाम बहुत सुनने को मिलता है, परंतु यहां तो मरणांगन में भी अरे अरे मर गया बचाओ बचाओ के बदले ईश्वर की इच्छा में अडिग श्रद्धा दिखाने वाले नाम स्मरण, यहां यू भी वाहवा है और यू भी वाहवा है। पुरुषार्थ 100% जीवन का, परंतु मालिक का चाहा जो कुछ भी हो उसमें अपने दिल की पूरी खुशी।
4: 1920 में नागपुर कांग्रेस के बाद मेरे आग्रह से गांधी जी ने वर्धा में एक आश्रम खोला। सारे भारत की दृष्टि से अहमदाबाद एक तरफ पड़ जाता था। भारत के मध्य में ऐसी महान प्रवृत्ति का कोई केंद्र हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र पसंद किया गया और वर्धा नगर से 4 मील की दूरी पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई। बापू ने विनोबा को उस आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 1926 में चैत्र मास के प्रथम दिवस पर विनोबा जी वर्धा पहुंचे।
0: 21 से 38 तक विनोबा जी सेवाग्राम में रहे, बाद में पवनार में उनका परमधाम आश्रम बना। इतने साल तक एक स्थान पर ही बैठे थे, परंतु चित्त से वे उन्मुक्त थे, किसी स्थान से चिपके हुए नहीं थे। वे कहते कि परमधाम यानी दुनिया का मध्य बिंदु, अपनी दुनिया का वो मध्य बिंदु ही रहने वाला था।
4: मेरे मानस में बहुत सी योजनाएं उठती है, परंतु उसका आधार आप बने तभी वे पूरी हो सकती है। लेकिन आपका क्या भरोसा, आज यहाँ है कल चले भी जा सकते हैं, आपके आधार पर कोई योजना नहीं बना सकता।
1: मैंने कहा, मेरे आधार पर योजना मत बनाइए, स्वतंत्र आधार पर बनाइए, मैं तो यहां हूं तब तक हूं।
0: जमनालाल जी का देहांत हो गया था। उस संवाद को याद करके विनोबा जी कहते हैं कि आज जमनालाल जी जीवित होते तो मैं पूछता, मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम भाग जाओगे, अब आप ही कहां भाग गए, यहां तो सभी ने आपका भी भरोसा किया था कि सब संस्थाओं के आप आधार हैं, आपने तो कभी छोड़ने की बात भी नहीं की थी, फिर सारा छोड़कर क्यों भाग गए।

0: जब तक बापू थे तब तक खुद होकर कभी स्थान छोड़ने का विचार मन में आया नहीं था। बापू की आज्ञा के बिना स्थान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। चित्त की ऐसी वृत्ति हो जाने के कारण बापू के रहते कभी कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु बापू के जाने के बाद देश की परिस्थिति देखकर बाहर निकलने की, स्थान छोड़ने की प्रेरणा हुई। बापू होते तो शायद इस आश्रम के बाहर कभी नहीं निकलता।
1: आश्रम के किसी लड़के ने विनोबा के पास जाकर जिद पकड़ी कि मेरे लिए कोई चित्र बना दीजिए। विनोबा ने बच्चे से पूछा कि किसका चित्र बनाना है। उत्तर में जवाब आया, मनुष्य का। और विनोबा ने स्लेट पर एक मनुष्य का चित्र बना दिया। पास में ही जानकी देवी बजाज खड़ी थी। स्लेट पर के मनुष्य का चित्र देखकर वे एकदम चौंक गई। अरे ये मनुष्य तो बापू है, कहकर जोर जोर से मदालसा को पुकारने लगी। मदालसा के पहुंचने तक विनोबा ने चित्र पहुंच डाला।
2: अरे रुको रुको, देखो इनको अपने पिता के स्थान पर बिठाया है, परंतु अभी दो क्षण पहले इस स्लेट पर बापू का चित्र बनाया था। मैं नाना कहती रही और इन्होंने पोंछ डाला।
3: बाबा आपने वह चित्र क्यों पोंछ डाला?
0: अरे ये तो स्लेट पर बनाया हुआ चित्र था। गांधी जी का चित्र बनाने के लिए यह थोड़ी ही किया था। यह छोटा लड़का जिद पकड़ कर बैठा था कि मनुष्य का चित्र बना दो, तो मनुष्य कहते ही मेरे सामने गांधी जी खड़े हो जाते हैं। सो मनुष्य का चित्र बनाते बनाते वह बापू का चित्र बन गया। अपने दुर्बल पांव से परंतु बापू के ही मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश है।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातःकाल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना, मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने, तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओ, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर, कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रही। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा। चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना। चल चल अब अंदर चल। चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो? अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से?
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है? ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा है, वो जा पकड़ लिया ना, ले आ इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा चल चल, आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देबू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देबू के दादाजी गुजर गए। देबू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देबू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देबू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे।
1: बहुत कम

0: त्याच्याबद्दल निशाची भक्ती सुरू केली. काय काय कर
1: मन भावन

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत जरूरी यात्रा पर निकले हैं और आपको सूरज ढलने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना है। रास्ता लंबा है, उबड़ खाबड़ है और आपके पास सवारी के रूप में एक तेज घोड़ा है। एक समझदार मुसाफिर ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वह बिना एक पल गवाएं फुर्ती से घोड़े पर जीन कसेगा, लगाम हाथ में लेगा और पूरी गति से आगे बढ़ेगा। वह रास्ते के ढाबों पर रुककर आराम करने में, व्यर्थ गप्पे लड़ाने में अपना समय नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर एक बार सूरज डूब गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया तो वह रास्ता भटक जाएगा और जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगा। हमारी यह जो जिंदगी है ना, यह भी ठीक वैसे ही एक सीमित यात्रा है। विधाता ने हमें सांसों की एक तय पूंजी देकर इस संसार के रास्ते पर भेजा है, लेकिन अफसोस कि हम इस यात्रा की गंभीरता को भूलकर आलस और कल पर टालने की बीमारी में जी रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी गहरी नींद से जगाने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह चेतावनी रूपी सूत्र। कबीर तुली पलानिया चाबक लिया हाथी, कबीर तुली पलानिया चाबक लिया हाथी, दिवस थका साई मिलो पीछे पड़ी है राती।

0: श्रोताओं, कबीर साहब एक कुशल घुड़सवार की तरह साधक के भीतर का साहस जगाते हुए कहते हैं, कबीर तुली पलानिया, हे साधक, अब देर मत कर, तुरंत उठ और अपनी इस काया रूपी घोड़े पर तुली पलानिया यानी सजगता की जीन कस लें, अपनी साधना को तैयार कर लें। चाबक लिया हाथी और अपनी हाथी यानी हाथ में विवेक और होश का चाबक यानी चाबुक थाम लें, ताकि जब भी यह मन रूपी घोड़ा आलस करे या भटके तो तू इसे ज्ञान की चोट से सही रास्ते पर ला सके। कबीर इस तत्परता के पीछे का सबसे बड़ा कारण अगली पंक्ति में बताते हैं, दिवस थका साई मिलो। दिवस थका का अर्थ है दिन रहते यानी जब तक तुम्हारी आंखों में रोशनी है तब तक शरीर में सांसें चल रही हैं और यह जीवन रूपी दिन बचा हुआ है। इसी समय में अपने पुरुषार्थ से वह साई यानी निराकार परमात्मा से मिलो यानी एकाकार हो जाओ। पीछे पड़ी है राती, क्योंकि यदि तुमने आलस किया तो बहुत जल्द बुढ़ापे और मृत्यु की भयानक राती यानी रात पड़ जाएगी और उस अंधकार में तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यह दोहा क्षणभंगुरता और तीव्र संवेग का महासूत्र है। बौद्ध दर्शन ने जिसे अनित्य भाव कहा और वेदांत में जिसे काल की गति माना गया है, कबीर उसे यहाँ समझा रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। वह सोचता है कि भजन, ध्यान और ईश्वर की बातें बुढ़ापे में करेंगे। कबीर इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। यह जीवन रूपी दिन बहुत छोटा है। जो साधक अपने हाथ में होश का चाबुक लेकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही इस जीवन का पूरा लाभ उठा सकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी उम्र और अपनी सांसों का हिसाब लगाइए। हम रोज अपनी जिंदगी का एक और कीमती दिन व्यर्थ की चिंताओं, गप्पों, सोशल मीडिया और कल कर लेंगे के झूठे बहाने में गंवा देते हैं। हमें लगता है कि रात अभी बहुत दूर है, पर समय का पहिया बहुत तेज घूम रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने हाथों में उस चाबक यानी होश को थामने की, अपने आलस को झटका दीजिए। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुद्धि जागृत है, इस दिवस में उस राम नाम के सुमिरन को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। अपने मन को उस परमात्मा के प्रेम में लगाइए, ताकि जब मृत्यु की रात आए तो आप अंधेरे से डरने के बजाय परम आनंद के प्रकाश में लीन हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बा तथागता, तू म्हणालास वास्तवातील मानवी जीवन हे सत्य आहे, जन्म होणे हे सत्य आहे, दुःख हे सत्य आहे, तसेच मृत्यू होणे हे देखील सत्य आहे। तू अविवेकी प्रश्न बाद केलीस, अविवेकी प्रश्नांच्या उत्तराने कोणतेही फलित नाही, लाभ नाही, तेव्हा मानवी मेंदू भ्रमिष्ट करणाऱ्या आणि हजारो वर्ष काल्पनिकतेत भोवंडणाऱ्या अविवेकी प्रश्नांना तू बाद केलेस, माणसाचे लक्ष विवेकी बनविलेस, शील संवर्धनातून नीतिमान बनणाऱ्या प्रवासात प्रज्ञाशीलतेने परोपकाराने मानव समूहासाठी कसे जगावे हे तू शिकवले. दुःखाला भिडणं आणि दुःखाशी लढणं हे तू शिकवलेस. तू म्हणालास दुःख हे सत्य आहे आणि प्रत्येक सजीवाच्या आयुष्यात ते येणार आहे. त्यामुळे दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध मार्ग सत्य, त्याचा मार्ग तूच दाखविलास. दुःख म्हणजे फक्त नकारात्मकता, बुद्ध फक्त दुःखावरच बोलतात अशीही टीका झाली तुझ्यावर. परंतु हे तथागता, तू फक्त दुःखच उगाळीत बसला नाहीस तर त्यावरील प्रभावी मार्गही तू कथन केलास. विश्व बनले अणू आणि रेणूंनी, परमाणूंनी, हा विज्ञानाचा अगदी अलीकडचा शोध हिग्स बोसॉन कणांचा तू 2500 वर्षांपूर्वी मांडलास. आणि विश्वाची संरचना सिद्ध करताना आपल्या तपसामर्थ्यानं भांडलास आणि भिडलास निसर्गाला. तसं तू शोधून काढलं देह कष्टावणाऱ्या साधनेतील भोंगळपण. ज्ञान साधनेसाठी जेव्हा कष्टावला तुझा देह, तेव्हा 5 श्रवण पंचवर्गीय भिक्खू सेवेसाठी होते तुझ्या तत्पर. पण तू जाणलेस शरीरात अन्न नाही म्हणून ऊर्जा नाही, ऊर्जा नाही म्हणून साधनेची प्रबळता नाही, एकाग्रता नाही. देह कष्टावल्यामुळे तुला नदीचे पाणी प्राशन करताना किती कठीण यातना झाल्या. धुळीने माखलेल्या देहाला सरपटत न्यावे लागले नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत. ऊर्जेशिवाय तू एवढा गलित गात्र की तुला वाटले चेतनाच निघून जाईल या क्षणी शरीरातून. धुळीनं माखलेला देह घेऊन थकलेला झाडाच्या बुंद्याशी टेकून बसलास तू आणि सुजाता आली खीर घेऊन वनदेवतेला द्यायला. तिला वाटले तू वनदेवताच, तिने दान केली तुला खीर श्रद्धापूर्वक. खीरीच्या प्राशनाने तुला वाटला उत्साह आणि तू मध्यम मार्गाचा उद्घोष केलास. रिकामे खीरीचे पात्र तू भिरकावलेस नदी पात्रात उलट दिशेने आणि संकल्प केलास मला ज्ञान प्राप्ती होणार असेल तर हे पात्र प्रवाहासोबत वाहून येणार नाही. पात्र दिसेना असे झाले तसा तू मात्र ठामपणाने माघारी फिरलास ज्ञान प्राप्तीच्या संकल्प आणि जिज्ञासेने. बोधिवृक्षाच्या झाडाखाली तू पालथी मारलीस. पद्मासनातील ध्यानमुद्रेने अर्धोन्मिलित नेत्रांनी संकल्प केलास ज्ञान प्राप्तीचा, बुद्धत्व प्राप्तीचा. आता हो काहीही घडू दे, काहीही उलथा पालत होऊ दे, कितीही येऊ देत संकटे, कितीही तरी बुद्धत्व प्राप्तीशिवाय उठायचेच नाही असा संकल्प तुझा, तुझे अधिष्ठान, तुझी ध्यान साधना टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणारी, एकातून दुसऱ्यात प्रवेशणारी ज्ञान बिंदूकडे.
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोती आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. ऑलवेज आज.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि अब जिस हैप्पीनेस के हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है। मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग, और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगती है शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। ये बिलीफ सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया I am a happy being. This itself is a big shift in the way I'm going to think. और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी happiness dependent नहीं है, मेरी happiness बाहर से नहीं आनी है, तो I stop looking for it outside. You know, अभी तक I'm always looking for it. And मैं सब कुछ यही सोच कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये decide करना है, मुझे खुश रह कर
0: चीजें
1: करना है। यू नो द फोकस शिफ्ट्स, एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रहकर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क। तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा वाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर, लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, वाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, वाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहां से लाना है, वहां से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ दिस एनर्जी। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू वर्क ताकि मुझे ये मिले, लेकिन आई एम गोइंग टू गो टू वर्क ताकि आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस। पूरा पर्पस शिफ्ट हो जाता है। एंड एक फर्स्ट थॉट जो मॉर्निंग की है ये क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी वोकैबुलरी को चेक करें तो ये हैव टू वर्ड इसको निकालना,
0: इसको डिलीट ही कर देना चाहिए। एंड समवेयर अमेजिंग, ओ माई गॉड, आई कॉन्ट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट, या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला
1: है। देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूं मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा। वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क। और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग. सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो. रात को प्रिपेयर योर सेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट. कुछ भी अपने आप नहीं होगा. हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा. अपने आप नहीं,
0: यू हैव टू डू दिस.
1: अपने आप नहीं होगा. नहीं, बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं. जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, चेंज इट. एंड चेंजिंग इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इट विथ समथिंग एल्स. हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जेनरेट करती है. ठीक है, थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है. फीलिंग पर पता चलेगा, वाई नॉट चेंज द थॉट. जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं आई हैव टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है. अभी अभी करो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी. इट इज इमीडिएटली हैपनिंग इट साइड. लेट्स ट्राई टुमारो मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा, आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं. सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूं, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूं
0: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा.
1: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And अगर वो automatically अपने आप सिर्फ नहीं create हो रही, बैठ कर उसको करना है. बैठना है, अपने आप से दो मिनट बात करनी है, पहली good morning अपने साथ होनी चाहिए. It is very important. And prepare, I want to go to work, I'm very happy. Not, I have to go to work to earn this, to get happiness. नहीं, equation change है. I am a happy being. और वो जो दो मिनट हम reflection रोज करते हैं, उसको सुबह में करके शुरू करना है. अब आप निकले morning.
0: तो अपने साथ जो हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, this conversation actually can go on.
1: वैसे भी सारे काम करते हुए conversation अंदर चलती
0: जाती रहती है. You know, so why don't we consciously create this conversation?
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि meditation कोई दो मिनट, दस मिनट या एक घंटे की चीज नहीं है. मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है. क्योंकि मेडिटेशन मींस क्या, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन. मेडिटेशन मींस थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मींस अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स. तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा, हम सारा दिन कर सकते हैं. लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं, क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितनी. तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठ कर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत ईजी है. अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट. राइट थॉट से उठे, प्रॉमिस योर सेल्फ इमिडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका. क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है. कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल. करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है. अब उसी को या तो ऐसे करके करो या
0: बच्चे
1: फिर
0: सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार
1: पहले से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे. अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज. हाँ ये है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. नाउ वंस आई स्टार्ट माई डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल. ये तो फंडामेंटल है. आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें, कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है.
0: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो,
1: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन. सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला. या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे. रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट इज द पॉइंट अननेसेसरली वी आर क्रिएटिंग. सी, लेट्स बी केयरफुल. जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, दिस इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप एवं सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी. तो खुशी है, अब सिर्फ ध्यान रखना कि अब जजमेंटल, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल
0: मतलब
1: में
0: दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है. और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं, मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली, देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
1: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना, एक दिन अपने आप को हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूं, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माय वर्क एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एंड अदर पीपल्स वर्क एंड द सिनेरियो, दुनिया में क्या हो रहा है उसके. वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अब जैसे ही ये हम जजमेंटल होने लगते हैं, लेकिन लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है. सपोज सीनियर है, जूनियर को बोल रहे हैं बार बार, लेकिन वो मानता ही नहीं, तो अब क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन आएगी और गुस्सा आएगा, हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं. दैट इज वाई वी से एंगर इज लाइक टेम्प्ररी इनसेनिटी, यू गो टेम्प्ररी इनसेन. वाई इनसेन, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं. पहली चीज तो वो इमोशन ने आपको ओवर पावर कर लिया है, सो यू लूज योर क्रिएटिविटी.
0: एक्चुअली अगर हम देखें शिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था, हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे. और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
1: बिल्कुल.
0: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे वही दिखेगा
1: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों, हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी,
0: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
1: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
0: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
1: yes.
0: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी, तो फिर पूरा फोकस आपके ऊपर था.
1: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बनाकर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर, मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, ऑलमोस्ट
0: एवरीवन. यस,
1: एवरीवन.
0: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
1: या व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
0: ओके.
1: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
0: आपके कर्म को ही मैंने,
1: कर्म या बोल, व्यवहार, जो भी. आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस, मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
0: तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे.
1: एक्जेक्टली, दैट्स द पॉइंट. तो आपको खुद को भी नहीं पता.
0: हाँ, कि आप तो, हाँ, आई नो. जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
1: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माय एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
0: हु एम आई
1: तो फिर भी ठीक है, हु एम आई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूं, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूं. एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी, ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट,
0: क्योंकि एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
1: यस, लेकिन आप सारा दिन में देखना ना, सपोज मैं आप एन एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ, कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे. लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, I say, I did not expect this from you. So expectation मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने different तरह से कैसे कर लिया. So I did not expect this from you. तो किसी के past के साथ उसको compare करना कि ये जैसे करते आए हैं, जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके belief systems पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ, और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी लेट डाउन, वेरी लेट डाउन, एंड वो हर्ट, फिर सैडनेस, एंड फिर एंगर. एंगर भी निकलता, आउटबर्स्ट तो निकलती है. अब बहुत दो बातों में हम फंसते हैं, एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना, उसमें भी बहुत चैलेंजेस, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, वो भी. ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
0: मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, मुझसे क्या चाहिए, बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं.
1: अब दोनों केस में क्या है, इफ यू मीट माय एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे, तो दोनों चीजों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रेडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं है और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. हूज फॉल्ट इज दिस,
0: उनकी नेचुरल. सी अगेन, यू नो, इट्स नाउ फिर हम बिल्कुल उस डीप बिलीफ सिस्टम्स पे आ गए हैं जो जिन पर हम, वही पूरा मेरा प्रोसेस उसी पे खड़ा है कि जो आप मुझसे एक तरह से बिहेव करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो इट्स एक्चुअली
1: It's so natural I get hurt.
0: I get hurt, yes.
1: Belief system change karne na apne sare. I didn't hurt you.
0: I think language.
1: I just changed my behavior. ये बहुत critical हो जाता है कि future prediction पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है, वो खुशी कैसे स्टेबल होगी.
0: तो ये इस बिलीफ
1: क्योंकि वो तो एक भविष्य का प्रेडिक्शन है ना, दिस इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजी के मैंने भविष्य का आपका प्रेडिक्शन कर दिया और उस पर अपनी खुशी को बेस कर दिया, और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे, एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ, यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की,
0: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है ये.
1: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
0: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे.
1: नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे. आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे. क्या होगा फर्क,
0: एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी.
1: एक्सपेक्टेशंस
0: बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
0: तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी,
1: लेकिन अगर नहीं किया तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ, या ये नहीं कर सकते.
0: आई थिंक सो, यस,
1: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे
0: होते रहेंगे.
1: अगर हमें अपने जीवन
0: गुड, यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट.
1: ये तो कर सकते हैं ना.
0: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
1: हाँ, वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे, कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू. सी, इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी, हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाले हूँ उसके बाद.
0: नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है
1: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी, अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ.
0: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है. सपोज एनडीए में जाना, मेरा मन है एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी.
1: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात. दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो. लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया. सी, इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ. इट हैज टू बी मी. इफ इट इज नॉट माई डिसीशन आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट. लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा. देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर करो.
0: अगेन, ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते और उससे मुझे खुशी मिल रही है.
1: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ.
0: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस. फाइन, फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बनाया था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा. अगर मैंने उस अपना बनाया होगा, मैं उसे एक्सेल भी कर जाता हूँ, लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था.
1: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था. देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज़ को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं.
0: Because it is between you and the work.
1: Yeah, when whatever decision, आपने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का है, जब तक, I know one brother, जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है? The mother did not like the idea. The mother did not approve of the girl. And भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया. और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज. लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहाँ थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया. अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने, पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया. यू नो, एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया
0: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
1: exactly.
0: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है,
1: स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के
0: आप वही आप
1: में, एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया, दिस देन बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप. फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहां भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं. तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज मेरी
0: अपनी
1: नहीं हो जाती. आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो दिन, देन इट्स ओनली मी माई डिसीजन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट. ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा आपके लिए क्या आपके लिए क्या आपके लिए क्या, वो दर्द क्रिएट करने वाला है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने के प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है. तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है. उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
0: तो दैट्स ओके,
1: आप हर्ट नहीं होंगे. सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन, एंड देन इट्स एनर्जी ऑफ पेन.
0: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने का बापू ने तय किया। सबसे पहले कौन जाए, ये प्रश्न उठा तो बापू ने पहले सत्याग्रही के तौर पर विनोबा का नाम चुना और दूसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का। बापू ने विनोबा को सेवाग्राम आश्रम में बुलाया और पूछा,
1: तैयार होने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा? तुम्हारे सिर पर तो बहुत बोझ है।
2: तब मैंने कहा, काम तो बहुत से हैं, परंतु वे सब मेरे हाथ में हैं। मेरे सिर पर उनका कोई बोझ नहीं, मैं तो इसी क्षण तैयार हूं। पवनार जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी आज्ञा मेरे लिए यमराज की आज्ञा के बराबर है, उससे इनकार करने का सवाल ही नहीं।
0: बापू के पास उन्हें 24 साल हो गए थे। एकाग्रता पूर्वक बापू के कार्यक्रमों में डूबे हुए थे, परंतु बापू के आश्रम वासियों को छोड़कर कोई उन्हें जानता नहीं था। जब प्रथम सत्याग्रही के तौर पर उनका नाम आया तो सबके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि ये विनोबा कौन है। तब बापू ने विनोबा के बारे में एक छोटा सा लेख लिखकर जन समाज के सामने उनको ला खड़ा किया। ।1942 के आंदोलन के पहले की बात है। गांधी जी ने जेल प्रवेश के साथ ही उपवास शुरू करने की बात सोची। तब उनके मन में प्रश्न उठा कि प्रेम पूर्वक सामूहिक उपवास करके मृत्यु का आलिंगन करने का आंदोलन हो सकता है या नहीं। जब सेना में लाखों लोगों की भर्ती हो सकती है तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उपवास का श्री गणेश अपने आप से करने का बापू का विचार था, पर उपवास की श्रृंखला कैसे चलाई जाए, आदेश से उपवास हो सकते हैं क्या, इत्यादि सब प्रश्न सबको परेशान कर रहे थे। बापू ने विनोबा को बुलाया और अपने मन की सारी कल्पना विनोबा के आगे रखते हुए पूछा,
1: जो काम ज्ञानी ज्ञानपूर्वक कर सकता है वही काम अनुयायी श्रद्धा पूर्वक कर सकता है या नहीं?
2: जी हाँ, कर सकता है। जो काम राम जी ज्ञानपूर्वक कर सकते हैं वही काम हनुमान जी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं।
0: बात पूरी हो गई, विनोबा उठकर चले गए। यदि बापू उपवास शुरू करे तो दूसरे लोगों को भी उपवास शुरू कर देने चाहिए, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। 9 अगस्त का दिन आया, बापू गिरफ्तार हो गए। उसी दिन विनोबा भी जेल चले गए। जेल में दाखिल होते ही विनोबा ने जेलर से कहा,
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, जेल में सभी नियमों का मैं सूक्ष्मता से पालन करने वाला और दूसरों से पालन कराने वाला हूं। आपको यह भी मालूम है कि मैं जेल में आता हूं तब से आपका काम कम हो जाता है, आपका सभी काम मैं उठा लेता हूं, परंतु इस वक्त ऐसा होने वाला नहीं है। सुबह मैं खाकर आया हूं इसलिए दोपहर के भोजन का सवाल नहीं है, परंतु शाम से मैं खाने वाला नहीं हूं, कब तक भोजन नहीं लूंगा मैं खुद नहीं जानता हूं। आपका कोई अनुशासन तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी एक शिस्त है उसके पालन के लिए यह कर रहा हूं।
0: बापू गिरफ्तार हुए तब प्यारेलाल जी बाहर थे। बापू ने उनसे कहा था कि विनोबा को खबर पहुंचाओ कि जेल में दाखिल होते ही उपवास शुरू नहीं करने हैं। प्यारेलाल जी ने वो संदेश किशोरलाल भाई को भेजा। किशोरलाल भाई ने कलेक्टर से कहा। कलेक्टर ने गवर्नर से पूछा कि ऐसा संदेश भेज सकते हैं क्या। गवर्नर ने कहा, हाँ भेज सकते हैं, शर्त इतनी ही है कि एक भी शब्द अधिक न कहा जाए, कोई मुलाकात भी नहीं, सिर्फ कह देना कि उपवास न करने का बापू का आदेश है। परंतु किशोरीलाल जानते थे कि विनोबा किसी के कहने से मानने वाले नहीं। उन्होंने आखिर वालुंस्कर को भेजकर बापू का आदेश विनोबा को कह सुनाया। ऐसे है 20वीं सदी के ये हनुमान जी।

0: बापू ग्रामोद्योग संघ बनाना चाहते थे। ग्रामोद्योग संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए इस बारे में चर्चा चली तो बापू के मन में मेरा नाम आया, परंतु मुझको किसी पद पर बिठाना आसान नहीं था। बापू ने पहले तो उस काम के गुणगान शुरू किए, फिर मुझसे बोले,
1: ग्रामोद्योग कितने महत्व का और अच्छा कार्य है। यदि तुम ऐसे महत्व के कार्यों को उठा लेते हो तो मेरे सिर पर उसकी कतई चिंता नहीं होगी, परंतु हाँ, मेरे दबाव के कारण यह काम करना है ऐसा नहीं है। तुम खुद इस पर सोचो और फिर जो चाहे वो निर्णय करो।
0: मैं तो थोड़ा टफ था, परंतु जो लोग बापू वाक्यम प्रमाणम वाले थे उनसे भी बापू आखिर का वाक्य यही कहते कि तुम लोग इस पर सोचो। यह उनकी मर्यादा थी, वे कर्म प्रधान थे, काम होना चाहिए यह देखते थे, परंतु मनुष्य की ओर भी देखते थे। बापू ने मुझे आखिर का मंत्र सुना दिया, मैंने भी पिताजी का रंग का प्रयोग वाला किस्सा सुनाकर कहा, खादी का प्रचार तो पूरा होता नहीं है, ग्रामोद्योग को न्याय कैसे दे पाऊंगा।
2: विनोबा ने खादी का काम हाथ में लिया था, इसलिए बापू को स्वीकार करना पड़ा कि नए काम के लिए नए मनुष्य को ढूंढना होगा। एक मनुष्य दो कामों को न्याय नहीं दे सकता। बापू मान गए।

0: बार बापू ने बहुत महीन कातना शुरू किया था और मेरा उस वक्त मोटा कातने का प्रयोग चल रहा था। उसका जिक्र करते हुए मैंने बापू को लिखा कि आपकी तो बाणभट्ट की कादंबरी चल रही है और मेरी तो रामायण ही चलती है।
1: मैंने पत्र द्वारा जवाब दिया, मेरी बाणभट्ट की कादंबरी नहीं है, मेरी भी तुम्हारी जैसी रामायण ही है। फर्क मात्र इतना ही है कि तुम्हारा अभी बालकांड चल रहा है और मेरा उत्तरकांड चल रहा है।

0: विनोबा जी मानते हैं कि किसी के हृदय में यदि प्रवेश पाना हो तो उसके गुण देखने से ही वो प्रवेश मिल सकेगा, दोष देखने से नहीं। हृदय शुद्धि और शब्द शक्ति का काम तभी बनेगा जब गुण ग्रहण होगा। दूसरों का दोष देखना नीचे की भूमिका है। समाज शास्त्रज्ञों की ऐसी भूमिका है कि किसी के दोष भी नहीं देखने चाहिए और किसी के गुण भी नहीं देखने चाहिए, तभी सम्यक दर्शन हो सकेगा। उसके भी आगे की भूमिका नैतिक भूमिका है, जिसमें दूसरों के दोष कम करके देखना और गुणों को बढ़ाकर देखना होता है। गांधी जी की यही भूमिका थी।
1: गांधी जी के पास जाने के पहले मेरी भूमिका अलग थी। प्रत्येक की परीक्षा करता था और यह पोल है ऐसा तय करता जाता था, परंतु बापू अपनी नैतिक भूमिका पर खूब जोर देते थे। इसलिए एक बार मैंने बापू से पूछा, दूसरों के दोषों को कम करके देखने में और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखने में सत्य की हानि नहीं होती क्या? इस भूमिका का सत्य निष्ठा के साथ कितना मेल बैठता है?
2: यह तो स्केल है, जैसे नक्शे में एक इंच लिखा हो तो उसे 4 मील मानते हैं, वैसे ही हमारी आँख ऐसी विचित्र है कि दूसरे का दोष थोड़ा भी हो तो उसे बढ़ाकर देखती है और अपना गुण छोटा हो तो भी उसे बढ़ाकर देखती है। इसलिए स्केल के मुताबिक दूसरों का दोष कम करते जाने से और अपने गुण कम करते जाने से सही नाप निकल कर आएगा।
0: बापू के इस जवाब से विनोबा को मार्गदर्शन मिला, परंतु उसके बाद भूदान यात्रा के सिलसिले में उन्हें नया सत्य प्राप्त हुआ कि दूसरों के दोषों की तरह अपने भी दोषों को कम करके देखना चाहिए और दूसरों के गुणों की तरह अपने गुणों को बढ़ाकर देखना चाहिए। किसी का भी दोष दर्शन नहीं, सबका गुणगान। मीरा गाती थी ना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। दुनिया में सर्वत्र गोविंद ही भरा है, कौन भला कौन बुरा। असम के महापुरुष श्री शंकर देव ने लिखा है, जो दूसरों के दोष देखता है वो अधम है, जो दूसरों के गुण और दोष दोनों देखता है वो मध्यम है, जो केवल दूसरों के गुण ही देखता है वो उत्तम है, जो दूसरों के छोटे से गुण का विस्तार करता है वो उत्तमोत्तम है। बापू विनोबा का संबंध अनोखा था, एक तरफ अत्यंत निकट का था, दूसरी तरफ विनोबा कहते हैं कि
1: वैसे मैं 32 साल बापू के पास रहा, परंतु निकट जनों में बापू का कम से कम समय लेने वाले लोगों में मेरी गिनती होगी, बिना किसी विशेष काम के या खुद बापू के बुलाने को छोड़कर। मैं कभी बापू के पास गया नहीं, पत्र भी बहुत कम लिखता था, साल भर में 2-3 बस।

0: विनोबा की बापू भक्ति भरत भक्ति थी। बापू के साथ विनोबा का पत्र व्यवहार भी बहुत कम होता था। कभी कुछ विशेष चर्चा करनी होती तो वे खुद ही लिखते थे। एक बार विनोबा जी को बापू का पत्र मिला। उस वक्त श्री कमल नयन बजाज वहां हाजिर थे। उन्होंने देखा कि बाबा ने बापू का पत्र पढ़कर फाड़ डाला और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाबा की रजामंदी से उन्होंने वह पत्र देखना चाहा। बाबा ने हां कहा तो टोकरी में से सब टुकड़े उठाए और जोड़कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुमसे बढ़कर उच्च आत्मा मेरी जानकारी में नहीं है। उनसे पूछा गया कि आपने ये पत्र क्यों फाड़ डाला तो उन्होंने जवाब दिया,
1: उसको मैं फाड़ता नहीं तो क्या करता, वह पत्र मेरे किस काम का था, निकम्मी चीजें इकट्ठी करने से क्या लाभ। बापू की महानता थी कि उन्होंने पत्र में ऐसा लिख दिया, परंतु मेरी कमी और कमजोरी वे क्या जाने।
0: आज बापू का नाम लेते ही विनोबा की आंखों से आंसू झर पड़ते हैं। तब आश्चर्य होता है कि क्या ये वही विनोबा है जिनके बारे में ये सारा सुनते हैं। माँ और बापू के लिए बाबा का जो उत्कट प्रेम है उसे देखकर यही लगता है कि ये कोई अनोखा प्रेमी है। दुनिया उसको निर्मोही, निस्संग, अनासक्त, वैराग्य संपन्न सन्यासी के नाते पहचानती है, परंतु उस अनासक्ति के बाहरी कवच के अंदर छिपा हुआ जो कुसुमवत कोमल हृदय है उसकी शाह पाना मुश्किल है। कई बार वे कहते हैं,
1: मारण में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होई। जीवन पंथ में संत और प्रभु दो तारक मिले, एक मेरे हृदय में है और दूसरे का आशीर्वाद सदा मेरे मस्तक पर बरसता रहा है।

0: एक बार साबरमती आश्रम में रामायण के एक श्लोक पर चर्चा चली। वो प्रसंग ऐसा कि रावण जब सीता जी को उठाकर ले गया, तब रामचंद्र जी को रास्ते का पता चले। इस दृष्टि से सीता जी ने अपने गहने नीचे पृथ्वी पर फेंक दिए थे। जब प्रभु के हाथ में वे गहने आए, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को वे गहने दिखाए और पूछने लगे कि क्या तुम इन गहनों को पहचानते हो। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, केवरे और कुंडल जो कि ऊपर के भाग के अलंकार है, उन्हें मैं नहीं जानता। मैं उनके नुपुरों को जानता हूं, क्योंकि रोज उनके चरणों की वंदना करते समय मैं उन्हें देखता था। बापू तो क्रांतिकारी थे ही, वे भी चर्चा में भाग लेते हुए बोल उठे,
1: लक्ष्मण का यह कथन सही नहीं लगता। माता जैसी भाभी का मुख नहीं देखेगा, यह कैसा ब्रह्मचर्य। अच्छा बताओ विनोबा, इस पर तुम्हारा क्या अभिप्राय है?
2: मैंने जवाब दिया, लक्ष्मण ब्रह्मचारी थे, इसलिए सीता का मुख उन्होंने देखा नहीं था। यह दृष्टि आपको नापसंद है, इसलिए आप उस वाक्य को नापसंद करते हैं। उस दृष्टि से वह नापसंद करने योग्य ही है। स्त्री का मुख नहीं देखने का नियम ब्रह्मचारी को लेना, इसमें गलती है। परंतु मैं इस वाक्य का दूसरा अर्थ लेता हूं। इसमें लक्ष्मण ने सीता का मुंह देखा नहीं, इतना ही नहीं, इसमें तो यह भी है कि राम सीता के पति लक्ष्मण से पूछते हैं। इसका अर्थ है कि राम भी अपनी पत्नी के गहने पहचानते नहीं, मतलब पति ही पत्नी के गहने नहीं पहचानता है। इसका अर्थ यह निकला कि सीता भी और राम भी दोनों ही अनासक्त थे, दोनों एक दूसरे की आकृति की ओर नहीं देखते थे, एक दूसरे को ब्रह्म रूप देखते थे। परंतु लक्ष्मण सीता के चरणों की पूजा करता था, पादाभिवंदन करता था, यानी उपासना के तौर पर चरणाकृति को मूर्ति समझकर उपासना करता था।
1: तुम तो शास्त्र वचनों का खूब सुंदर बचाव करना जानते हो, यह ठीक भी तो है। जहाँ तक संभव हो शास्त्र वचनों का अच्छा अर्थ करना, और होना भी सही चाहिए कि शास्त्र वचनों का अच्छे ही अर्थ हो।
0: एक बार कोई जैन मुनि आश्रम में पधारे थे। आश्रम की प्रवृत्ति देख लेने के बाद विनोबा के पास गए और पूछा, गांधी जी तो महात्मा हैं, आप कौन हैं?
2: मैं आत्मा हूं। बहुत बार मुझे भी महात्मा का पद दिया जाता है, पर मैं तो कहता हूं कि महात्मा नहीं हूं। महात्मा तो बुद्ध, महावीर आदि हो गए। मैं तो विज्ञान आत्मा हूं। विज्ञान के जमाने में कम से कम हम वैज्ञानिक मनुष्य तो बने।
0: विनोबा चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आत्मवान बने। वो समझ ले कि वो क्षणभंगुर देह नहीं है, चैतन्य अमर अजरामर आत्मा है। ये प्रतीति हर एक को हो सकती है, हर एक को यह चीज साधनी चाहिए। वे कहते हैं कि
2: प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रपति नहीं हो सकता, परंतु स्थित प्रज्ञ तो हर कोई हो सकता है। स्थित प्रज्ञता विज्ञान युग की अत्यावश्यक मांग है। हर कोई अगर विज्ञानात्मा बने तो कितना दुख, कितनी मनोवेदना जीवन में से अपने आप हट जाएगी, और मनुष्य सत्य के ज्वलंत प्रकाश में अपनी प्रगति यात्रा निष्कंटक आगे चला सकेगा। आत्मा कभी महात्मा भी नहीं होता, अल्पात्मा भी नहीं होता, आत्मा आत्मा ही है।
0: एक बार विनोबा ने बापू को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि अभी मेरा कुरान का अभ्यास चल रहा है। बापू ने विनोबा को लिखा कि
1: हम लोग कुरान लिखते हैं और तुम कुरान क्यों लिखते हो?
2: कुरान, यह कुरान का अपना रूप है, जैसे पुराण वैसे कुरान। यह अपना खुद का है, पराया नहीं है। ऐसी उससे आत्मीयता महसूस होती है, अपना रूप दिए बगैर कोई शब्द आत्मसात नहीं होता है।
0: बापू ने विनोबा को कुरान के अभ्यास के जो किताबें चाहिए वे मंगाने के लिए लिखा। पिकथॉल, अमर अली मोहम्मद अली, देवबंद शिवली और निजामी के अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, मराठी अनुवाद विनोबा जी देख गए थे, परंतु उनका समाधान नहीं हुआ था, तो आखिर उन्होंने अरबी पढ़ने का निर्णय लिया। विनोबा के जीवन में निरंतर विकासशीलता रही है। जिस क्षण जो चीज बंधनकारी लगती है उसे उसी क्षण फेंक देने में उन्हें दूसरा क्षण नहीं लगता। जैसे सांप अपनी केंचुली को सहजता से छोड़ देता है, वैसे ही वे उस वस्तु को छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग उन्हीं के शब्दों में।
2: 1942 से 1944 तक मैं 3 साल तक जेल में रहा। उस वक्त अनेक लोगों के साथ अति निकट परिचय में आया। जेल में परिचय तो निकट का ही होता है। अनुभव से मैंने देखा कि जेल में अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। कुछ लोगों को अहिंसा पर श्रद्धा थी तो कुछ लोगों को हिंसा पर श्रद्धा थी। मैंने यह भी देखा कि अहिंसा पर श्रद्धा रखने वाले परम दयालु ही हों ऐसा भी नहीं था। मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अहिंसा इस पक्ष में है उस पक्ष में नहीं है, ऐसा भेद करने का कोई खास मतलब नहीं है। बापू ने अहिंसा और सत्य का मंत्रोच्चारण किया। अनुयायियों ने अपनी शक्ति देखकर शांतिमय और वाजिब मार्ग स्वीकार किया। यह भेद समझने जैसा है। काम करने की रीति असत्य होने पर भी, हिंसक होने पर भी पीसफुल शांतिमय हो सकती है। फिर भी इस तरह कहने में उन्होंने जो सत्य निष्ठा दिखाई उससे मुझे खुशी हुई। बापू यह बराबर जानते थे कि अहिंसा के नीचे सबके हस्ताक्षर ले लेने मात्र से काम हो गया, ऐसा मानूंगा तो मूर्ख साबित होऊंगा।

0: स्वराज आंदोलन में अनेक प्रकार के लोग शामिल थे। पूरी हजामत के बिना मुक्ति नहीं मिलती, उसके वास्ते सर्व संकल्प सन्यासी बनना पड़ता है। कल्पना का एक भी बाल बच जाए तो मुंडन अधूरा रहता है। सब उपाधियां मिटाकर चित्त को निरुपाधिक बनाना चाहिए, खास करके इस पक्ष का और उस पक्ष का। इस तरह आत्मा के दो टुकड़े करने वाली कल्पनाओं का बोझ ढोकर हम अहिंसा की शक्ति का उपयोग करें, यह बहुत संभव नहीं है। ऐसा निर्णय लेकर विनोबा जेल के बाहर निकले और बापू से मिले। बापू ने बात ही बात में विनोबा से पूछा,
1: विनोबा, यह आखिरी जेल नहीं है, फिर से भी जेल हो सकती है।
2: मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ।
1: जेल में कुछ नया सोचकर आए हो क्या?
2: जी हाँ, मुझे सब संस्थाओं से मुक्त होना है, उसके बिना अहिंसा में मेरी आगे गति नहीं होगी।
1: बहुत अच्छा कहा, मतलब तुम सेवा सब संस्थाओं की करोगे परंतु अधिकार नहीं लोगे।
2: बापू की सम्मति मिल गई, इसलिए और किसी की कुछ चली नहीं। सभी संस्था वालों को बापू ने मेरे बदले समझा दिया और मुझे मुक्त कर दिया।
0: जीवन की प्रत्येक क्रिया नियमित समय पर हो ऐसा नहीं कर सकती, परंतु जीवन की मुख्य क्रियाएं समय पर हो तो बाकी के कामों में नियमितता यो ही सज जाती है और काम का बोझ नहीं लगता है। ये बताते हुए विनोबा जी बापू का दृष्टांत देते हुए कहते हैं,
2: बापू ने गीता का पदार्थ कोश तैयार किया था, वैसा ही कोश दूसरों ने भी तैयार किया था, परंतु बापू को वह पसंद नहीं था। बापू ने कहा,
1: मैंने उसके पीछे जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई, इससे मुझे लाभ ही हुआ है। कोश के लिए मैं रोज 20 मिनट लेता हूँ, दूसरे सब काम छोड़कर इसी के पीछे लगा होता तो शायद यह जल्दी पूरा हो जाता। ऐसा किसी को भास हो, परंतु वह भास ही है, उसमें मनुष्य ऊब भी जा सकता है। अनाशक्ति योग मैंने रोज एक श्लोक लिखकर पूरा किया, सोने के पहले रोज लिख ही डालता था, वैसा करता तो शायद वह काम पूरा होता।

कोष का काम यांत्रिक था तो वह वैसा हुआ, परंतु गीता के अनुवाद जैसा विचारात्मक काम अमुक समय पर ही हो ऐसा नहीं कह सकते। बापू के लिए वह ठीक है, उनके जीवन में वह सध गया था, अन्यथा प्रतिभा के काम में स्फूर्ति देखकर काम करना होता है, उसमें समय तय नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे विशेष कामों को छोड़कर बाकी के सर्वसाधारण काम आदि नियमितता से करेंगे तो उसमें दिलचस्पी बढ़ेगी, यह अनुभव की बात है।

0: मानव के अंतरंग में छिपी भलाई को विनोबा आर पार देख सकते हैं। इसी से उनके लिए सभी लोग नारायण स्वरूप है। वे कहते हैं कि आज तक मुझे एक भी दुर्जन नहीं मिला। उनकी दृढ़ मान्यता है कि दोष देह के है, गुण आत्मा के है। मानव शरीर मात्र नहीं है, वो तो चैतन्य का आविष्कार है। वो देहधारी है, इसलिए देह के साथ कुछ न कुछ दोष रहेंगे ही, परंतु साथ साथ वो आत्मवान भी है, इसलिए गुणवान भी रहेगा ही। ऐसा अनमोल दृष्टि लाभ उन्हें प्राप्त होने से वे कीचड़ में भी कमल खिला सकते हैं। विनोबा की प्रखर बुद्धिमत्ता और गुण ग्रहणशीलता दिखाने वाला एक प्रसंग उन्हीं के शब्दों में।
1: सन 1916 की बात है। पापू से छुट्टी लेकर मैं एक साल के लिए अध्ययन के वास्ते गया था। यात्रा के दौरान मथुरा भी गया था। उधर अपना काम निपटाकर मैं स्टेशन पर टिकट लेने गया, इतने में गाड़ी छूट गई। मैंने देखा कि एक मिशनरी वहां हिंदू धर्म पर व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान ईसाई धर्म पर था, परंतु हिंदू धर्म की निंदा किए बिना वह व्याख्यान नहीं दे सकता था। वह कह रहा था कृष्ण व्यभिचारी था। अब मथुरा जैसे नगर में कृष्ण को कोई व्यभिचारी कहे तो सामने वाले पक्ष के हाथ में लाठियां तो होंगी ही। इसलिए मैं बिना पूछे उधर पहुंच गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहां कुछ होने वाला है, बहुत करके यहां लाठियां ही चलेंगी। इसलिए बिना किसी के कहे मैंने ही व्याख्यान देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये भाई जो कह रहे हैं वे हिंदू धर्म के विरोध में नहीं कह रहे हैं। हम जिस भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं और जिसकी स्तुति पूजा करते हैं उसकी वे निंदा नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी कल्पना का जो कृष्ण है उसको वे व्यभिचारी मानते हैं और उस कृष्ण की वे निंदा करते हैं। इस तरह से व्यभिचारी मनुष्य की निंदा करने में वे अपने ही पक्ष के हो जाते हैं। इसलिए हमारी मान्यता के विरुद्ध यदि वे व्यभिचारी की स्तुति करें तब उनका और हमारा विरोध हो सकता है। अब कृष्ण कैसे थे उसके बारे में मतभेद है, व्यभिचारी मनुष्य की निंदा हो इस विषय में हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा मैंने जब सबको जचाया तब जाकर वह संकट टला, अन्यथा उस मिशनरी के सिर पर लाठी चलने वाली ही थी। इस प्रसंग पर मेरे हाथ में एक युक्ति आ गई। वह ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था और उसका कृष्ण के साथ कोई द्वेष नहीं था, परंतु उसने कृष्ण को अन्य दृष्टि से देखा था, इसलिए वह उनकी निंदा कर रहा था। परंतु उसकी और हमारी बुद्धि में कोई विरोध नहीं है।

0: ईसा मसीह के पट्ट शिष्य सेंट पॉल ने एक जगह लिखा है कि अगर एक मनुष्य के पाप से सारा मानव समाज पापी होता है तो एक मनुष्य के पुण्य से पावन भी हो सकता है। बापू भी वैसा ही मानते थे। वे कहते थे कि अगर एक भी सच्चा सत्याग्रही पूर्ण सत्याग्रही हो तो वो सारी दुनिया को बदल सकता है। एक बार बापू से इसी विषय पर विनोबा की चर्चा हुई। विनोबा ने पूछा,
1: तो क्या वह पूर्ण सत्याग्रही कैपिटलिस्ट होगा, सारे पुण्य का संचय अपने पास करेगा?
2: वह उस पुण्य का भी ट्रस्टी होगा, अपने पुण्य संचय का भी बंटवारा करेगा।

0: साबरमती आश्रम के आरंभ के दिन थे। गांधी जी के आकर्षण से अनेक नर रत्न आश्रम में इकट्ठे हुए थे। विनोबा, काका साहब, किशोरलाल भाई तो जाने हुए रत्न थे। एक दफा गर्मी के दिनों में छुट्टियों में उस शाला के शिक्षक और विद्यार्थियों ने पदयात्रा करते हुए आबू जाने का तय किया। पदयात्रा के अनुभवी और प्रेमी दो ही शिक्षक थे। एक थे हिमालय में सैकड़ों मील की यात्रा करने वाले श्री काका साहब और दूसरे थे महाराष्ट्र में पदयात्रा करके घूमने वाले श्री विनोबा। सबने मिलकर इस पदयात्रा का नेतृत्व विनोबा को सौंपा। गांधी जी ने पदयात्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कभी भी निश्चित मील से कम प्रवास नहीं करना। ये आदेश आरंभ में थोड़ा कठिन लगा। साबरमती से पैदल चलकर सब आबू पहुंचे। वहां प्रसिद्ध जैन मंदिर देखकर सब वापस लौटे। उस वक्त पदयात्रियों की छोटी छोटी टोलियां बनी और अंतिम टोली में तीन व्यक्ति रहे, विनोबा जी, श्री काका साहब और विलासपुर के श्री रामानंद जी।
1: हम तीनों पालनपुर दिशा के रास्ते से चल रहे थे। साधारण तौर पर रेल की पटरी के साथ साथ चलने का हमने तय किया था और अब तो अहमदाबाद के नजदीक पहुंच भी रहे थे। उस रात को साबरमती स्टेशन पर पहुंच जाने की कल्पना थी। संध्या काल को एक छोटे से स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से पूछ लिया कि यहाँ से साबरमती स्टेशन कितना दूर है। उनसे ही मांग कर पानी पी लिया और फिर आगे बढ़े।
2: बहुत दिनों का सहप्रवास था, शाम भी ढल चुकी थी, इसलिए बातचीत बंद हुई और मौन यात्रा चालू हो गई। मैं कुछ आगे चल रहा था। विनोबा और काका साहब बीच बीच में थोड़ा बोल लेते थे और साथ साथ चलते थे। इतने में एक छोटा सा पुल आया। उस पुल पर पथिकों के चलने के लिए बगल से कोई रास्ता नहीं था। दो पटियों के बीच में मिट्टी भी नहीं थी। एक एक फीट के अंतर पर वे पटियां थी। एक पटिया से दूसरी पटिया पर ही पाँव रख सकते थे। दोनों पटियों के बीच से नदी का पानी भी दिखता था। पुल पर चढ़ गए। आधी दूर तक पहुंचे होंगे कि पीछे रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक रेलवे इंजन डब्बों के साथ काल पुरुष की तरह बड़ा आ रहा था। मैं सबसे आगे था, फिर काका साहब और आखिर में विनोबा। गाड़ी को देखते ही सब दौड़ने लगे। पुल पर से नीचे कूदना भी संभव नहीं था। बगल में उतर पड़े यह भी संभव नहीं था। उस स्टेशन मास्टर ने बताया भी नहीं कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली है। वह जानता था कि हम लोग रेल के रास्ते से जाने वाले हैं, परंतु ईश्वर को कसौटी करनी थी तो वह भी कहना भूल गए।
3: रामानंद जी तो खूब आगे थे, अतः पुल पार करके नीचे उतर गए। मैं भी तीव्र गति से दौड़ने लगा। पीछे कालदूत ही साक्षात जो आ रहा था। विनोबा भी दौड़ रहे थे, परंतु उनकी आंखें कमजोर थी। चश्मा और चप्पल न पहनने का उनका व्रत था। दौड़ते दौड़ते दोनों पटियों के बीच कहीं पांव फिसल गया तो गाड़ी पीछे अपने क्रूर पंजों में दबाने को आ ही रही थी, परंतु कौन क्या कर सकता था। मैं तो बच गया। आगे पहुंचकर एक तरफ उतर गया और धड़कते हुए दिल से आने वाले उन भयंकर क्षणों का इंतजार करने लगा। मैंने देखा कि विनोबा दौड़ते आ रहे हैं और इंजन उनके नजदीक पहुंच गया है। दोनों मित्रों के हृदय पर सवा सवा मन के बोझिले पत्थर मानो लद गए थे। संध्या का समय, चारों ओर अंधेरा। विनोबा के नजदीक जाकर मैं चिल्ला उठा, विनोबा जंप टू द लेफ्ट, जंप टू द लेफ्ट। अंधेरे में विनोबा दिखते नहीं थे। मेरी आवाज सुनकर विनोबा बाई तरफ कूदे और मैंने उनको अपनी बाहों में थाम लिया। दो चार क्षणों में ही वह कालदूत धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। जिस वक्त विनोबा को मैंने खींचा, उस वक्त मुझे रेलगाड़ी की आवाज के साथ साथ विनोबा के मुख से निकलता हुआ प्रभु नाम भी सुनाई दिया।
1: मुझे पटियां दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु मुझे मालूम था कि ये पटियां समानांतर होती हैं, इसलिए दौड़ने के लिए मैंने एक ताल तय कर लिया। बचपन में मैंने वैसी कोशिश की थी तो भगवान का नाम लेते लेते उसी ताल पर दौड़ने लगा। इंजन एकदम नजदीक आ गया है, ये मैं समझ गया था। काका साहब दिखते नहीं थे, परंतु आवाज सुनकर मैं एकदम बाई ओर कूद पड़ा।
3: मेरी बाहों में विनोबा के आने पर मुझको भी लगा कि परमेश्वर ने ही इनको बचाकर प्रसाद रूप में लौटाया है। उस वक्त तो सबके दिल भी भरे हुए थे, ईश्वर का कैसे उपकार माने, कोई कुछ बोला नहीं। रात को आश्रम पहुंचे और सो गए। दूसरे दिन मैंने बापू को सारी घटना सुनाई और कहा, अब तो विनोबा को चप्पल और चश्मा पहनने की आज्ञा दे ही दीजिए बापू। आज भी जब वो प्रसंग याद आता है, प्राण हाथों में लेकर हमारा दौड़ना, विनोबा को हाथ खींचकर पकड़ना, गाड़ी की धड़धड़ आवाज और उन सब के बीच भी विनोबा के मुंह से राम नाम सुनाई देना, ये सब नजरों के सामने आता है।
0: देह नश्वर है और आत्मा अमर है, ये बातें तो लोग विनोबा के मुंह से बचपन से सुनते आए हैं, परंतु जब साक्षात मृत्यु पीछे से आती हो, तब जीवन और मृत्यु के आलिंगन में से गुजरते समय भी विनोबा के मुंह से सुनाई दिया राम नाम, मानो गीता मूर्तिमंत हो आई हो। ठंडे कलेजे से जीवन की परिपूर्ण सुरक्षा में राम नाम बहुत सुनने को मिलता है, परंतु यहां तो मरणांगन में भी अरे अरे मर गया बचाओ बचाओ के बदले ईश्वर की इच्छा में अड़िग श्रद्धा दिखाने वाले नाम स्मरण, यहां यू भी बहावा है और यू भी वहावा है। पुरुषार्थ 100% जीवन का, परंतु मालिक का चाहा जो कुछ भी हो उसमें अपने दिल की पूरी खुशी।
4: 1920 में नागपुर कांग्रेस के बाद मेरे आग्रह से गांधी जी ने वर्धा में एक आश्रम खोला। सारे भारत की दृष्टि से अहमदाबाद एक तरफ पड़ जाता था। भारत के मध्य में ऐसी महान प्रवृत्ति का कोई केंद्र हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र पसंद किया गया और वर्धा नगर से 4 मील की दूरी पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई। बापू ने विनोबा को उस आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 1926 में चैत्र मास के प्रथम दिवस पर विनोबा जी वर्धा पहुंचे।
0: 21 से 38 तक विनोबा जी सेवाग्राम में रहे, बाद में पवनार में उनका परमधाम आश्रम बना। इतने साल तक एक स्थान पर ही बैठे थे, परंतु चित्त से वे उन्मुक्त थे, किसी स्थान से चिपके हुए नहीं थे। वे कहते कि परमधाम यानी दुनिया का मध्य बिंदु, अपनी दुनिया का वो मध्य बिंदु ही रहने वाला था।
4: मेरे मानस में बहुत सी योजनाएं उठती है, परंतु उसका आधार आप बने तभी वे पूरी हो सकती है। लेकिन आपका क्या भरोसा, आज यहां है कल चले भी जा सकते हैं, आपके आधार पर कोई योजना नहीं बना सकता।
1: मैंने कहा, मेरे आधार पर योजना मत बनाइए, स्वतंत्र आधार पर बनाइए, मैं तो यहां हूं तब तक हूं।
0: जमनालाल जी का देहांत हो गया था, उस संवाद को याद करके विनोबा जी कहते हैं कि आज जमनालाल जी जीवित होते तो मैं पूछता, मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम भाग जाओगे, अब आप ही कहां भाग गए, यहां तो सभी ने आपका भी भरोसा किया था कि सब संस्थाओं के आप आधार है, आपने तो कभी छोड़ने की बात भी नहीं की थी, फिर सारा छोड़कर क्यों भाग गए।

0: जब तक बापू थे तब तक खुद होकर कभी स्थान छोड़ने का विचार मन में आया नहीं था। बापू की आज्ञा के बिना स्थान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। चित्त की ऐसी वृत्ति हो जाने के कारण बापू के रहते कभी कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु बापू के जाने के बाद देश की परिस्थिति देखकर बाहर निकलने की, स्थान छोड़ने की प्रेरणा हुई। बापू होते तो शायद इस आश्रम के बाहर कभी नहीं निकलता।
1: आश्रम के किसी लड़के ने विनोबा के पास जाकर जिद पकड़ी कि मेरे लिए कोई चित्र बना दीजिए। विनोबा ने बच्चे से पूछा कि किसका चित्र बनाना है। उत्तर में जवाब आया, मनुष्य का। और विनोबा ने स्लेट पर एक मनुष्य का चित्र बना दिया। पास में ही जानकी देवी बजाज खड़ी थी। स्लेट पर के मनुष्य का चित्र देखकर वे एकदम चौंक गई। अरे, ये मनुष्य तो बापू है, कहकर जोर जोर से मदालसा को पुकारने लगी। मदालसा के पहुंचने तक विनोबा ने चित्र पहुंच डाला।
2: अरे रुको रुको, देखो इनको अपने पिता के स्थान पर बिठाया है, परंतु अभी दो क्षण पहले स्लेट पर बापू का चित्र बनाया था। मैं नाना कहती रही और इन्होंने पोंछ डाला।
3: बाबा, आपने वह चित्र क्यों पोंछ डाला?
0: अरे, ये तो स्लेट पर बनाया हुआ चित्र था। गांधी जी का चित्र बनाने के लिए यह थोड़ी ही किया था। यह छोटा लड़का जिद पकड़ कर बैठा था कि मनुष्य का चित्र बना दो, तो मनुष्य कहते ही मेरे सामने गांधी जी खड़े हो जाते हैं। सो मनुष्य का चित्र बनाते बनाते वह बापू का चित्र बन गया। अपने दुर्बल पांव से, परंतु बापू के ही मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश है।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओह, मैंने देखा, मैंने देखा, तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6 6:33 और 33 सेकंड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी बिले। ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दूं, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ मांगो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे, देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा, अब चल तो चल, भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल, आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलिच्छ को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं, घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे, एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थी। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोते हो, आताच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।